0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: Cabana.
0: Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारे रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपको?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम कि छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल लगा?
3: नहीं, वो मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना। चलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा नहीं, रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप ना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे गंदे काम.
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स, एज यू जस्ट हर्ड. नाम के स्पेलिंग ROCHIE. तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो. आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर. हाई नॉटी गर्ल.
4: हाई रोशी,
2: हाउ आर यू?
4: Very good. How are you?
2: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है. लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट.
4: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना.
2: और ऐसे देखो कैसे. तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या? लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा. स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट.
4: स्टार्ट वहां से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ.
2: हाँ.
4: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं.
2: हाँ.
4: But clearly not all men deserve a second chance.
2: हाँ, correct.
4: There were too many outbursts, हर बार का निखरे. हाँ. बाहर जाके सीन क्रिएट करना. तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ. तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी.
2: अच्छा.
4: And this was between her and me. So we decided, she sent him a text. She started flirting with him. He was a little interested. So he flirted back, which she of course told me. And after that, she very clearly asked him if he's seeing someone or not. Obviously, we were seeing each other. He would not tell me that he's flirting with someone else. So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating. He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
2: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना. व्हाट एम आई सेइंग कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
4: लाठी भी ना टूटे. एब्सोल्युटली
2: बेब, यू आर सो क्लेवर. आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ. विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
4: यस एब्सोल्युटली.
2: ले ले बेबी.
5: यू've been roshified.
2: यू आर अमेजिंग. I mean, I don't know. I'm sure you hear that a lot, but you are amazing. आपसे बात करके ना इतना refreshing feel हो रहा है, जैसे मैंने अभी बस नींबू पानी पी लिया हो.
4: इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है.
2: Actually, इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है. And like to let all of your secrets out so that you feel better about life. तो ऐसे ही मेरी mystery caller की तरह, अगर आपकी भी जिंदगी में कोई confession है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी. काम छे आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग ROCHIE. So do whatever you have to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, ट्रेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जब भी हम किसी पार्टी पर जाते हैं और मेरे बॉयफ्रेंड को अटेंशन नहीं मिल रही होती है, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे बोलता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है और हमें चले जाना चाहिए बिकॉज नहीं तो ही विल थ्रो अप एंड ही एक्सपेक्ट्स दैट आई विल लीव विद हिम. पहले दो तीन बार तो मुझे लगा कि इट वॉज जेन्युइन, बट वो हर बार ये करता है व्हेन ही इज नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन. अब क्या करूं मैं इसके बारे में?
0: रोशी के डीएम से
2: नीलाक्षी ने मुझे ये मैसेज लिखकर भेजा है. नीलाक्षी, स्वीटहार्ट, आई एम रियली सॉरी टू ब्रेक दिस टू यू, लेकिन यू आर डेटिंग अ नार्सिसिस्ट. तो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी टाइप्स होती है ऐसी हैं कि अगर वो एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर उन्हें अटेंशन नहीं मिल रहा होता है या दे फील कि यार हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक इमोशनली मैनिपुलेटिव ट्रिक है दैट दे पुल एवरी सिंगल टाइम. और पता है ऐसा भी हो सकता है इन सम सर्कमस्टांसेस कि आप उसका ब्लफ कॉल करने के लिए कहते हो कि हाँ ठीक है तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, कोने में बैठ जा, बट घर तो हम तब जाएंगे व्हेन आई डिसाइड. योर पार्टनर कुड एक्चुअली गो टू द लेंथ ऑफ थ्रोइंग अप जस्ट टू मेक यू लुक कि आप एक निग्लेक्टफुल पार्टनर हो. In that circumstance, आपको क्या करना चाहिए? You should rethink the entire relationship. क्योंकि आपने तो मुझे सिर्फ इसके बारे में एक facet बताया, but narcissists usually एक relationship में सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. And the best index to look at is जब आप इकट्ठे होते हो in a very romantic intimate setting, क्या वो सिर्फ अपने pleasure के बारे में सोचता है or does he even consider your pleasure? अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है then obviously Neelakshi, you are with a narcissistic person. और अगर आप भी Neelakshi जैसे एक ऐसे relationship में where you don't think that aapka relationship equal hai, you end up being the giving partner all of the time, then maybe hame baat kar leni chahiye. And to do that, you can hit me up insta par ya fb par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai r-o-c-h-i-e. So do whatever you need to do, hit me up baby, but kahin mat jana jana kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ऐसा कभी हुआ है दैट आपने एक डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया, आपको बंदा या बंदी मिल गए, एंड देन द फर्स्ट डेट एंडेड अप बीइंग अ डिजास्टर? इफ यस, सेंड मी योर नंबर एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल दिव्यांश. हाय दिव्यांश.
3: हाय रोशी, हाउ आर यू?
2: आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू?
3: वेल, आफ्टर दिस रीसेंट डिजास्टर विद द डेट, आई एम करंटली जस्ट, मैं क्या बताऊं आपको.
2: आपने जो मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था ना, आई स्वेयर एंड आई हेट टू एडमिट इट, बट मुझे इतनी हंसी आई वो सुन के, बिकॉज मैंने बहुत सारी डेटिंग ऐप स्टोरी सुनी है बट ये स्टोरी अनोखी है. सो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड?
3: अरे नथिंग, आई जस्ट मेट दिस गर्ल ऑन डेटिंग ऐप एंड हम लोगों की बात चालू हुई. पहले तो बीइंग अ गाय इतना मुश्किल है डेटिंग ऐप चलाना, क्योंकि जो आपको लड़की पसंद है वो आपको नहीं लाइक बैक करती, जो आपको लड़की नहीं पसंद वो लाइक बैक कर देती, लेकिन फिर उसके बाद अगर आपके पास प्रीमियम फीचर ना हो तो फिर आप बस उसी ख्वाहिशों में खोए जाओ कि कब आपके पास वो लकी नंबर आएगा कि आपने राइट स्वाइप मारा और बिल्कुल मैच हो गया. बट थैंकफुली आफ्टर लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स फाइनली हुई, फिर हमारी बात हुई एंड वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, टॉकिंग स्टेज से थोड़ा हो गया, 12-1 बज गए, बहुत अच्छे से बातें कर ली, गुड नाइट गुड मॉर्निंग भी हो गया, तो अगले दिन मिलते हैं और मिलने का प्लान भी मेट इन दिल्ली. बट क्या कैट्स निकली रोशनी, में क्या बताऊं, मतलब एटलीस्ट कुछ तो. अब उसकी बायो में लिखा था शी इज 5'5", नाउ बीइंग 6 मुझे वो लगा शी इज नॉट इवन 4.
2: हम
3: लोगों ने बात बात करी, उसने अपने बताया दैट शी इज अ मॉडल एंड ऑल, ठीक है, शी वाज वेरी प्रोमिनेंट अबाउट अ वर्क एंड ऑल, बट द कॉन्वर्सेशन बीच में इतनी ढीली सी हो गई थी दैट आई जस्ट वांटेड टू एस्केप. सो मैंने अपने भाई को बोला कि प्लीज बोल घर में कुछ इमरजेंसी और मेरे को कॉल कर. देन वो मोमेंट आया जल्द से जल्द, अब पूरा हाई हेलो हो गया, फिर मैंने वो थैंक यू एक नोट होता है ना, जस्ट बीइंग अ जेंटल कर्टसी की थैंक यू सो मच, इट वॉज फन मीटिंग यू, ये वो. फिर दो तीन बारी हमारे बातें और चली. अब उसके बाद उसने बोला लेट्स मीट अगेन. मेरे अंदर अब हिम्मत नहीं थी, मैंने उसे बोला कि देखो लेट्स जस्ट बी फोर फ्रंट, इट्स ओके, आई मीन दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम यूजिंग अ डेटिंग ऐप एंड लेट्स जस्ट इसको, मतलब आगे आई डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस. थोड़ा मैंने हम्बल वे में चीज बोल दी. उसका पहले तो मतलब जैसे मेरे ब्लूटूथ थैंकफुली ऑन थे इस बारे में और उसके भी ऑन थे क्योंकि मुझे दिख रहा था, तो उसने पहले आधे घंटे रिप्लाई के लिए, मैं यार इतना गंदा मैसेज कर दिया, मैंने दो तीन दोस्तों को दिखाया, उसने बोला नहीं यार ठीक है. आधे घंटे बाद मेरे को डायरेक्ट बिल का वो आता है कि प्लीज प्लेस दिस अमाउंट, मैंने आपको एक वो भेजा है कि मतलब यू हैव टू पे दिस अमाउंट इंक्लूडिंग द डेजर्ट. आई वाज लाइक व्हाट द. तो उसके बाद से तो मतलब अब डेटिंग तो अब थोड़ा ऐप में तो नहीं करेंगे, आप फिर देखते हैं.
2: वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल एवर एंड आई रियली होप कि आपके साथ अब कुछ अच्छा हो. मिस एडवेंचर की जगह
3: अब आपका कॉल आ गया, इससे ज्यादा क्या ही अच्छा होगा, आप ही मेरे साथ बाहर चल लो, एक काम करो प्लीज मतलब बेल स्प्लिट कर लेना, मैं मेरे को स्क्रीनशॉट मत भेजना.
2: It was very nice talking to you, Devansh. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई भाषण है which is related to a dating app, this was really cute. I don't know still if I will go out with Devansh or not. We will still see. मैंने उसको hold पे रखा है. लेकिन अगर आपके पास कोई story है, hit me up with it on Insta या FB. We'll get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. So while you find me on Insta या FB, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: मेरे हिसाब से रोशी थ्योरी नंबर 454 ये है कि दुनिया में दो तरह के प्लेयर्स होते हैं. एक तो वो एफ बॉयज जो दूर से ही एफ बॉयज लगता है कि आपको पता है कि भाई दिस इज अ पर्सन यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम विद एक रात के लिए, पांच रातों के लिए, बट छठी रात के बाद इसके साथ सपने नहीं देखने बिकॉज दिस का इज गोइंग टू डिसअपियर ऑन यू. लेकिन दूसरी तरह का जो प्लेयर होता है ना वो इतना प्यारा, इतना अमेजिंग, सॉफ्ट हार्टेड, इनोसेंट लगता है कि हर बार उसे देख के आपको लगता है कि यार He cannot be an F boy. कितना शरीफ लड़का है, इसके अंदर तो संस्कार हर जगह से छलक रहा है. लेकिन वो ही तो उनका प्लेइंग कार्ड होता है. दे लुक सो क्यूट एंड सो स्वीट एंड सो जेंटल दैट ना चाहते हुए भी आपका उन पर दिल आ जाए. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन इन माई ऑफिस जो दूसरी तरह का प्लेयर है. जितनी बार उसकी शक्ल देखती हूँ बाई गॉड उस पर दिल आ जाता है. फिर मुझे पता चलता है कि इतना स्कैंडल है ऑफिस में उसके बारे में ऑलरेडी. आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्कैंडल, बट इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड वी विल कंपेयर नोट्स अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, लेट्स गेट गॉसिपिंग एंड व्हाटएवर यू डू. कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ऐसा लगता था कि प्यार दो तरह के होते हैं। एक तरह का प्यार वो जिसके लिए आप किसी को भी मार दो, और दूसरे तरह का प्यार वो जिसके लिए आप कभी भी किसी भी वक्त मर जाओ। लेकिन एज लाइफ ग्रू लॉन्गर एंड आई मेट मोर पीपल एंड लव्ड मोर पीपल, मुझे ये एहसास हुआ कि एक तरह का प्यार और होता है, और वो प्यार वो होता है जिसके लिए आप जीना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी उम्र लंबी हो, आप चाहते हो कि आप उस इंसान की हर खुशी, हर माइलस्टोन देखो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी लंबी गुजरे उसका हाथ पकड़ के, आप चाहते हो कि जब आप अपनी आखिरी सांस लो, आफ्टर लॉट्स ऑफ ईयर्स ऑफ लिविंग टुगेदर, वो उस इंसान की आंखों के सामने हो। और अगर आपको भी इस तरह के प्यार का एहसास हो गया है, देन आई टोटली थिंक वी शुड टॉक अबाउट इट। ऑब्वियो आई एम गेटिंग वेरी रोमानी अबाउट लव टुडे। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। फाइंड मी ऑन द ग्राम और फेसबुक, एंड व्हेन यू डू दैट अपने प्यार की स्टोरी जरूर लिखना। एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप ना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और नॉटी टेक्स्ट लिखते हो जो पब्लिश भी हो जाते हैं और आपके पास एक ब्लॉग भी है उसके बारे में, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में कोई इल्म है नहीं, बेचारे को कोई आइडिया नहीं है, ऐसे गंदे काम।
1: The secret box.
2: गंदे तो नहीं है, बट लाइक आई एम सेइंग दैट योर बॉयफ्रेंड शुड नो द होल ट्रूथ अबाउट यू, राइट? बट अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते कि आप कैसे इंसान हो, यू कैन डू इट हियर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, टाइम फॉर द कन्फेशन बॉक्स एज यू जस्ट हर्ड। नाम के स्पेलिंग ROCHIE। तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर अपना नंबर और कन्फेशन भेज दो, एंड आई कॉल यू लाइक आई कॉल माई मिस्ट्री कॉलर। हाई नॉटी गर्ल।
3: हाई रोशी,
2: हाउ आर यू?
3: Very good. How are you?
2: Actually, आप गुड से भी बेटर हो, क्योंकि आपने मुझे जब अपना कन्फेशन भेजा ना, तो आई वॉज लाइक कि ये क्या इंसान है, इसका दिमाग कितना खुराफाती है, लाइक इट्स अ लेजिटिमेटली डर्टी माइंड यू गॉट।
3: अब परेशानी है रोशी, परेशानी का सलूशन तो निकालना पड़ेगा ना।
2: और ऐसे देखो कैसे, तो एक्चुअली ओके ठीक है, तो हुआ क्या, लाइक स्टार्ट से बताइए मोहतरमा, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट।
3: स्टार्ट वहाँ से हुआ कि एक गलत स्वाइप हुआ।
2: हाँ.
3: फिर मैंने सोचा चांस दे देते हैं।
2: हाँ.
3: But clearly not all men deserve a second chance.
2: हाँ, correct.
3: There were too many outbursts, हर बार का निखरे, बाहर जाके सीन क्रिएट करना। तो अब विदाउट क्रिएटिंग टू मच ऑफ हैसल, इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से कैसे हटाओ। तो मैंने सोचा एक आइडिया कि मैं अपने इस डेट को एक अपनी US की रिटर्न फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करूंगी।
2: अच्छा।
3: And this was between her and me, so we decided. She sent him a text. She started flirting with him. He was a little interested, so he flirted back, which she of course told me. And after that, she very clearly asked him if he's seeing someone or not. Obviously, we were seeing each other. He would not tell me that he's flirting with someone else. So she gave him an ultimatum that it's either me or this girl that you're dating. He decided to break up with me. Meri friend chali gayi ek hafte baad US aur problem life se bahar.
2: किस तरह के इंसान हो आप कि आपका दिमाग इतना स्मार्ट कैसे चलता है कि लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना, व्हाट एम आई सेइंग, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, है ना?
3: लाठी भी ना टूटे।
2: बेब यू आर सो क्लेवर, आपको तो मतलब मैं रोशिफिकेशन के साथ साथ अपना दिल भी देना चाहती हूँ। विल यू बी एक्सेप्टिंग बोथ ऑफ देम?
3: यस एब्सोल्युटली,
2: ले ले बेबी।
0: यू हैव बीन रोशिफाइड,
2: यू आर अमेजिंग। I mean, I don't know, I'm sure you hear that a lot, but you are amazing. आपसे बात करके ना इतना refreshing feel हो रहा है, जैसे मैंने अभी बस नींबू पानी पी लिया हो।
3: इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है।
2: Actually, इस गर्मी में नींबू पानी जरूरी है, and like to let all of your secrets out so that you feel better about life. तो ऐसे ही मेरी मिस्ट्री कॉलर की तरह अगर आपकी भी जिंदगी में कोई कन्फेशन है, feel free to hit me up Insta पर या FB पर। मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग ROCHIE। So do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: I was just thinking randomly कि पुराने जमाने में कितने romantic गाने बनते थे कि आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी मुझे तुमने ख्वाब में उड़ते हुए और whatever. लेकिन आजकल के गाने, वाह वाह मियाँ का बात करें, it is like dropping your location without using maps कि पनवाड़ी के पीछे वाली पिछली गली में है हमारे सज्जन की कोठरी. So romantic, not. शायद इसीलिए मैं सिंगल हूँ क्योंकि अभी भी मेरे रोमांस की जो कंपस की सुई है वो वहाँ अटकी हुई है कि आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़ते मेरे. अगर आप भी मेरी तरह एक डाई हार्ड रोमांटिक हो एंड 2026 हैज डन नथिंग टू चेंज योर परसेप्शन ऑफ लव विच इज रियली ओल्ड फैशन्ड, आई थिंक हमें इसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर लेनी चाहिए. एंड टू डू दैट यू कैन हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफ बी. एंड व्हाइल यू डू दैट, जिसके पास लव है बेबी उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक बावर्ची होता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। और सबने ना कभी कुछ ना कुछ तो कुक किया होता है, फिर चाहे वो हॉस्टल में तुम्हारे 2 मिनट नूडल्स हो या फिर चाय। तो हम सब कहीं ना कहीं तो बावर्ची होते ही हैं। इसी टाइटल को रखकर ऋषिकेश दा ने उस जमाने की एक बड़ी ही खूबसूरत फिल्म बनाई विद राजेश खन्ना एस बावर्ची एंड जया बच्चन जी। इस फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, एके हंगल साहब, असरानी साहब, दुर्गा खोटे। तो आज ना इसी मूवी की कहानियां बताऊंगी जो कि मैं कुक नहीं करके आई हूँ, वो सच में ये खट्टी मीठी किस्से एक्चुअली में ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस फिल्म हुए थे। शुरुआत करेंगे फिल्म की कास्ट और क्रेडिट से। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इससे पहले तक किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना ऋषिकेश दा, राजेश खन्ना, जया भादुड़ी जी की फिल्म बावर्ची की बात हो रही है। आपको पता है इससे पहले किसी भी इंडियन फिल्म में ऐसा नहीं हुआ था कि कास्ट और क्रेडिट को ना दिखाया जाए। हर फिल्म में जैसे क्रेडिट दिए जाते हैं ना, ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें क्रेडिट्स फिल्म के शुरुआत में नहीं दिए गए। फिर क्या किया गया, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो पता होगा, और अगर नहीं देखी है या फिर बहुत पहले देखी थी तो मैं याद दिलाऊंगी। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ये यूनिक आइडिया फिल्म के डायरेक्टर ऋषिकेश दा का था। पुरानी जींस पर हाय, मैं हूँ श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची, जो कि ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। राजेश खन्ना थे, जया बच्चन थी और भी बहुत सारे एक्टर्स थे। अब इस फिल्म में पहली बार ऐसा हुआ कि क्रेडिट्स नहीं दिए गए, यानी देयर वर नो टाइटल कार्ड्स। तो फिर क्या किया गया था, इसमें अमिताभ बच्चन जी के वॉइस ओवर ने हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था और ये यूनिक आइडिया पहली बार किसी फिल्म में देखा गया था। अच्छा, अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, लेकिन अपने बिजी स्केड्यूल में से क्यों उन्होंने टाइम निकाला, ये अभी बताऊंगी श्रेया के साथ वापस आप ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने ये सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो है ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

टाइटल्स के साथ एक्सपेरिमेंट ये पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। इट वॉज द फिनोमिनल ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने ये सोचा भी और अपनी फिल्म बावर्ची में किया भी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही थी द लेजेंडरी फिल्म बावर्ची की, ऋषिकेश दा की डायरेक्टेड, जिसमें बावर्ची बने थे राजेश खन्ना, उनकी लव इंटरेस्ट बनी थी जया बच्चन जी। और इस फिल्म में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कास्ट एंड क्रू के नाम नहीं दिए गए थे, बल्कि एक बहुत यूनिक आइडिया सोचा ऋषिकेश दा ने, एंड दैट वाज कि हर एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए अमिताभ बच्चन का वॉइस ओवर यूज किया गया। अब अमिताभ बच्चन उस टाइम पे बहुत बिजी थे, तो ऋषिकेश दा उनसे ये फेवर मांगने में थोड़ा कतरा रहे थे। उन्होंने जया जी से वाइल्ड शूटिंग द फिल्म ऐसे ही मुस्कुरा के बात बात में कह दिया कि काश अमित ये काम कर पाता। ये बात जया जी ने घर जा करके अमित जी को डिनर पे बताई। अमिताभ बच्चन और जया जी के लिए ऋषिकेश दा फादरली फिगर थे, हमेशा से एक बड़े भाई थे। जैसे ही अमित जी ने ये बात सुनी, वो ऋषिकेश दा के घर पहुंच गए और उनसे नाराज होके कहा, दादा ये बात आप मुझसे आके नहीं कह सकते थे, आपको जया की जरूरत पड़ी इसके लिए। ऋषिकेश दा ने मुस्कुरा दिया और उसके बाद तो वी ऑल नो व्हाट हैपेंड। पुरानी जीन्स पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, तो बस वापस आओ श्रेया के साथ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ना ये दोनों डेटिंग फेज में थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी बावर्ची की थोड़ी देर पहले। तो इस फिल्म के दौरान अमिताभ बच्चन और जया जी ना एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, वो प्यार में धीरे धीरे पड़ रहे थे। तो क्या होता था कि अमित जी जया जी को मिलने फिल्म के सेट पे जाते थे। अब सेट पे तो उनको उस टाइम के सुपरस्टार काका यानी राजेश खन्ना भी मिलते थे, जिन्हें अमिताभ बच्चन थोड़े अखरते थे। अच्छा, काका उस टाइम पे अपने स्टारडम के खुमार में भी थे। अमिताभ बच्चन बिजी जरूर थे, उनके पास फिल्में बहुत थीं, लेकिन जनरली उनकी फिल्में इतनी खास चल नहीं रही थी। ऐसे में काका उनको ताने मारा करते थे, रिमार्क्स पास किया करते थे। क्या अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया या फिर उनकी तब की गर्लफ्रेंड जया जी को, बताऊंगी थोड़े से गानों के बाद। मुझे बहुत मजा आता है आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में, क्योंकि फिर मुझे यकीन होता है कि आप वापस यहाँ होंगे। सो कम राइट बैक। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

काका बोले तो राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन जी को बहुत सारे ताने मारते थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। तो मैं कहाँ पे छोड़ के गई थी बात? हाँ, मैं ये बता रही थी कि ये वो टाइम था जब अमिताभ बच्चन एंड जया जी वर डेटिंग। वो एक दूसरे को मिल रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे, धीरे धीरे प्यार में पड़ रहे थे। तो अमित जी के पास बड़ी सारी फिल्में थी, वो बिजी भी थे, लेकिन उनकी फिल्में इतनी चल नहीं रही थी। ऐसे में द सुपर सक्सेसफुल राजेश खन्ना जब उनको सेट पे देखते तो ऑफकोर्स उन्हें वो कॉम्पिटिशन लगते और वो उनको बहुत सारे ताने मारते। अमिताभ बच्चन भी सुन लेते, जया बच्चन भी सुन लेती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब काका ने एक बहुत ही खराब शब्द कहा। इस शब्द को सुन करके जया जी का सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने काका को जाकर के उनके कान में एक ऐसी बात बोली जिसके बाद से उन्होंने कभी भी अमिताभ बच्चन को कुछ नहीं कहा। वो शब्द क्या था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: मनहूस, ये कह के बुलाया था काका ने अमिताभ बच्चन जी को। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है बावर्ची फिल्म की। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश दा, फिल्म के मेन लीड राजेश खन्ना और फिल्म की हीरोइन जया बच्चन। ये वो टाइम था जब जया बच्चन जया बहादुरी थी और अमिताभ बच्चन बहुत सारी फिल्में कर रहे थे लेकिन उनकी फिल्म सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, वो फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी एक के बाद एक। ये वो टाइम था जब जया जी और अमिताभ बच्चन प्यार करने लगे थे एक दूसरे से, तो अमित जी ना बावर्ची के सेट पे उनसे मिलने जाते थे और हाँ ऋषिकेश दा तो उनके दोस्त ही थे। ऐसे में राजेश खन्ना को बहुत अखड़ते थे। राजेश खन्ना चलते फिरते अमिताभ बच्चन को कोई ना कोई ताना मार ही देते थे। पर एक दिन ऐसा आया जब जया जी के सब्र का बांध टूट गया और वो था जब राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन को कहा, मनहूस, तुम मनहूस हो, जिस भी फिल्म में जाते हो वो फ्लॉप हो जाती है। ये बात जया जी के दिल पे सीधे जाके चुभी। उनको इतना गुस्सा आया कि अमित जी उन्हें चाय पे वापस बैठाते रहे, बैठ जाओ छोड़ो जाने दो। जया जी गुस्से में उठी, राजेश खन्ना के पास गई और उनके कान में कहा, एक दिन पूरी दुनिया देखेगी कि ये आदमी क्या बनेगा और आप क्या रह जाएंगे। इस एक लाइन के बाद वो वापस आके चाय पीने लगी एंड आफ्टर दिस काका ने अमिताभ बच्चन को कभी ताना नहीं मारा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और भी किस्से हैं उस जमाने के, तो गाने सुन करके यहीं वापस आना।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतुराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतुराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतुराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतुराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अच्छा एक और चीज में ये फिल्म बावर्ची खास थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और आज मूवी बावर्ची की बात कर रहे हैं। राजेश खन्ना, जया बच्चन एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। राजेश खन्ना यानी काका उस टाइम पे ना सुपरस्टार थे, बल्कि कहा जाता है कि इंडिया के वो फर्स्ट सुपरस्टार थे। उनके साथ हर हीरोइन ने कई सारी फिल्मों में काम किया था, फिर चाहे वो शर्मिला टैगोर हो, मुमताज जी हो, आशा पारेख हो, जीना तमानो हो, तनुजा जी हो, ऑल ऑफ देम। लेकिन सिर्फ एक हीरोइन थी जो उस टाइम पे अपने स्टारडम के पीक पे थी, पर काका से थोड़ी दूरी बना के चलती थी। उन्होंने राजेश खन्ना के ऑपोजिट एज इज लव इंटरेस्ट सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया और वो थी बावर्ची। जया जी और राजेश खन्ना की ये रोमांटिकली पेयर अप होने वाली पहली और आखिरी फिल्म थी, इसीलिए है ना ये यूनिक फिल्म, क्योंकि ऋषिकेश दा इन दोनों को एक साथ ले आए थे इस पिक्चर में। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, वापस आओ, बातें तो अभी बहुत सारी बाकी हैं उस जमाने की।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ऐसी फिल्म जिसने हमें जम करके हंसाया और बहुत सारे सीन्स में इमोशनल भी कर दिया। आज उसी की बात हो रही है, बावर्ची। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया और मैं बात कर रही हूँ ऋषिकेश दा द्वारा डायरेक्टेड फिल्म बावर्ची की। अच्छा, जो रेट्रो फैंस हैं उन्होंने डेफिनेटली ये फिल्म देखी होगी और जिन्होंने नहीं देखी उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में राजेश खन्ना बावर्ची बने थे, एक जॉइंट फैमिली के लिए खाना बनाया करते थे। पर अगर जब आप फिल्म देखोगे ना तो वो खाने से ज्यादा वो पूरी फैमिली का ख्याल रखते थे। सबके सीक्रेट्स भी इसी बावर्ची के पास होते हैं। जब ऋषिकेश दा ने ये अलग हट करके कैरेक्टर, एकदम अलग हट करके फिल्म काका को सुनाई ना, उन्हें बड़ा पसंद आया। सबसे ज्यादा एक्साइट उनको किया था बावर्ची की कॉस्ट्यूम, हाफ पैंट्स, एक शर्ट और सर पे टोपी। अब ये जो टोपी थी ना, इसकी बहुत

इंटरेस्टिंग कहानी है। इस टोपी को दो वजहों से पहना था राजेश खन्ना ने, एंड वो दो रीजंस क्या थे? आहा, अब तो आप मुझे जान गए हो, ऐसे कहाँ बताती हूँ मैं आपको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में। श्रेया को तो बड़ा मजा आता है, तो गाने सुन करके जल्दी से वापस आओ, फिर बताती हूँ इस टोपी के पीछे की कहानी। ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

लोगों को लगा कि ये टोपी राजेश खन्ना ने फिल्म के कॉस्ट्यूम के चक्कर में पहनी है, लेकिन इसका रीजन तो कुछ और ही था। हाय, मैं हूँ श्रेया और आप सुन रहे हैं मुझे पुरानी जीन्स पे, और आज बात हो रही है द फिनोमिनल फिल्म बावर्ची की। अच्छा, ऋषिकेश दा जब ये रोल लेकर के पहुंचे राजेश खन्ना के पास, तो उन्हें लगा था कि शायद काका मना कर दें, क्योंकि तब काका इमोशनल रोल्स तो कर रहे थे, लेकिन उनको साथ में अच्छा दिखना बहुत पसंद था, गुड लुक्स। सो राजेश खन्ना अपने कपड़ों को लेकर के, अपने कॉस्ट्यूम्स को लेकर के बहुत पर्टिकुलर होते थे। जब उन्हें पता चला कि इस फिल्म में वो बावर्ची का रोल प्ले करेंगे और उन्हें एक बावर्ची जैसे कपड़े पहनने हैं, तो उन्होंने हामी भर दी। ऋषिकेश दा को बड़ा अचंभा हुआ। फिर राजेश खन्ना ने एक बात कही कि उनके सर से बावर्ची की टोपी, अगर आप देखो ना, एक पॉइंटेड सी टोपी पहने हैं वो, जिसे उन्होंने एक सेकेंड के लिए भी फिल्म में नहीं उतारा। सो काका ने कहा कि इस पूरी फिल्म में वो ये टोपी पहने रहेंगे। तो ऋषिकेश दा ने आंखें छोटी करते हुए उनको शक की निगाहों से देखते हुए पूछा कि राजेश, तुम ये टोपी कॉस्ट्यूम के लिए पहनना चाहते हो या फिर कोई और रीजन है? काका ने मुस्कुरा के पता है क्या कहा, कि उनके बाल कम हो रहे हैं और टोपी की वजह से वो छिप जाएंगे। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, और भी बातें बताऊंगी ना, वापस तो आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना बंगाली फिल्मों से बहुत इंस्पायर होते थे, बहुत इम्प्रेस होते थे और इसीलिए उनकी कई सारी फिल्में बंगाली फिल्म से ही इंस्पायर थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। बावर्ची की बात हो रही है, ऋषिकेश दा ने बनाई थी, राजेश खन्ना और जया बच्चन थी विद अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स। ए के हंगल थे, असरानी साहब थे, दुर्गा खोटे थी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि बावर्ची भी एक बंगाली फिल्म से इंस्पायर थी और इसका नाम था गोलपो होलियो सोटी। ये फिल्म तपन सिन्हा ने बनाई थी। बनी तो ये 1966 में थी, लेकिन जब ये ऋषिकेश मुखर्जी ने देखी थी उन्होंने तभी सोच लिया था कि वो ये फिल्म राजेश खन्ना के साथ हिंदी में बनाएंगे। पुरानी जीन्स पर आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी, तो श्रेया के साथ वापस आओ।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: Only on Mirchi, it's hot.
2: Breaking news, Mirchi पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

0: जीन्स पर आप हो श्रेया के साथ। मेरा जाने का टाइम तो हो गया है, पर आपको पता है ना मैं अकेले नहीं जाती हूँ। इस समय एक गाना चूज करके मैं और आप मिल करके हाईवे तक घूम के आते हैं, तो चलो गाड़ी में जल्दी से बैठो। तो आज का मेरा हाईवे हिट पहली मुलाकात पे, एंड स्पेशली जब आप उनसे फर्स्ट टाइम मिलने वाले होते हो ना, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है ना कि क्या बातें होंगी, वो मुझसे क्या कहेगा, मैं उससे क्या पूछूंगी, आगे कॉन्वर्सेशन कैसे बढ़ाएंगे, अच्छा हम कैसे लग रहे होंगे एक दूसरे को, ये सब सवाल होते हैं ना। तो आज उसी एक्साइटमेंट पे
1: आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
0: यही गाना सुनते हुए चलते हैं। On that note, this is Shreya signing off. आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो फेसबुक और इंस्टा पे, RJ Shreya with love. ये है मेरा हैंडल, that's RJ SHREYA Shreya with love.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार, 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @ मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज, only on मिर्ची, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on Mirchi, it's hot.
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला कौन बोला,
1: अपना टाइम आएगा।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।
2: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभाव पूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज़ नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: 100 तारीफों के बीच एक क्रिटिसिज्म ही हमें क्यों याद रह जाता है? आइए इस माइंडसेट को समझें मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, मेरे साथ कई बार क्या होता है कि मैं लोगों से मिल रहा हूँ और बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं और लेट्स से मैंने एक प्रेजेंटेशन किया, बोलते हैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और कोई एक उनमें से होगा जो बोलेंगे यार तुम्हारी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम यार ये बहुत करते हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए, कुछ क्रिटिसाइज उसने कर दिया। अब 90 लोगों ने बहुत अच्छा बोला लेकिन एक ने कुछ गलत बोला। ऐसा क्यों होता है कि जब मैं वापस घर जाता हूँ वो एक चीज मेरे दिमाग में बार बार चलती रहती है और मैं सोचता हूँ यार उसने ऐसा बोल दिया। मैं 90 लोगों पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ कि यार 90 लोगों को फर्क पड़ा, अच्छा लगा उनको। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव की तरफ ज्यादा क्यों भागता है?
3: 100 लोग हैं, 90 लोगों ने आपको एक गिफ्ट दिया
2: जी,
3: लेकिन जो वो एक था उसने ऐसा हैमर मारा तो चोट लगी।
2: हाँ।
3: तो चोट लगी तो वो चोट दर्द हो रही है, दर्द को आपने ठीक नहीं किया है।
2: हाँ।
3: अगर आप दर्द को ठीक कर देंगे तो वो हैमर भी भूल जाएगा, लेकिन अगर मुझे यहाँ चोट लगी है और वो दर्द हो रहा है तो मुझे चोट मारने वाला याद आएगा ना, जितनी देर वो दर्द होगा, तो वो सिर्फ उस दिन नहीं याद आएगा, वो हफ्ते भी याद आएगा, अगली बार दिखेगा तो भी चोट याद आएगी। इम्पोर्टेंट ये है कि जब वो मिल रही है क्रिटिसिज्म उसी टाइम अगर हम उसको हील कर लेंगे ना तो वो घाव नहीं बनेगा, और हम सिर्फ घाव बनने नहीं देते, हम उस घाव को बार बार रिपीट भी करते हैं। तो वो घाव क्या होता है, सिर्फ माइंड में नहीं करते, हम किसी से बात भी करते हैं, हम कहते हैं पता है उसको क्या आता है, कुछ आता तो है नहीं, आके अपना दे के चला गया,
2: मैंने ये किया वो ऐसा बोला,
3: फिर सामने वाला उस पे और आपको एंडोर्स करता है, हाँ वो तो है ही ऐसा, तो हम अपने को और अलाउ करते हैं, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हमेशा हमें याद रखना है सामने वाला जो कह रहा है वो उसका नजरिया है और उनका नजरिया उनके संस्कारों से बनता है
2: जी।
3: और हर सोल की लंबी जर्नी है तो अलग अलग संस्कार हैं। वो रोल कोई भी प्ले कर सकते हैं आपके ऑफिस में, लेट से कोई आपका सीनियर है या कोई आपका जूनियर है, रोल अलग अलग है लेकिन डिफरेंट जर्नी डिफरेंट संस्कार। तो जब आपको कोई अप्रिसिएशन देना तब याद रखना कि मेरे बारे में नहीं है, ये इनके प्यारे प्यारे संस्कार हैं जो ऐसा बोल रहे हैं।
2: प्यारे प्यारे,
3: हाँ प्यारे है ना, वो अच्छा दिख रहे हैं, वो अच्छा बोल पा रहे हैं आपको।
2: हाँ।
3: कि उनके अच्छे संस्कार है ना, इसलिए वो कर पा रहे हैं।
2: हाँ।
3: और अगर कोई ऑपोजिट देगा तब भी याद रखना इट्स नॉट अबाउट मी, ये उनका संस्कार है, थोड़ा सा कड़वाहट भरी है मन के अंदर, कोई चोट लगी होगी कभी, इस वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं। जिसको अगर किसी को वायरल होता है ना तो उसको मीठी खीर भी अच्छी नहीं लगती है।
2: बिल्कुल,
3: अगर मेरे पास वो संस्कार है ना।
2: हाँ।
3: वो चाहे कभी भी बना हो वो संस्कार, तो आप बेस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट हो सकते हैं।
2: हाँ।
3: लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कुछ आपके अंदर गलती दिखाई देगी, नॉट बिकॉज आप गलत हैं, क्योंकि मेरे पास वो संस्कार है। तो प्रैक्टिस निंदा में नहीं करनी है, प्रैक्टिस स्तुति में करनी है।
2: अच्छा।
3: अप्रिसिएशन में करनी है।
2: बिल्कुल।
3: तो पुराने जमाने में वो घड़ी थी ना जो पेंडुलम ऐसे घूमता।
2: हाँ,
3: था
2: बिल्कुल।
3: तो मेडिटेशन हमें सिखाता है पेंडुलम को बस सेंटर में रखना।
2: हाँ।
3: जब अप्रिसिएशन मिले तब भी सेंटर में रखना।
2: हाँ।
3: अगर अप्रिसिएशन में सेंटर में रख लिया।
2: हाँ।
3: तो क्रिटिसिज्म में सेंटर में रहेगा वो
2: जी।
3: लेकिन अगर अप्रिसिएशन में वो 60 डिग्री इस तरफ गया टू द लेफ्ट।
2: हाँ।
3: तो वो क्रिटिसिज्म में 60 डिग्री टू द राइट जाएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Daily Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: वैलिडेशन से ज्यादा इनर इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब कोई अप्रिशिएट करता है हमको बड़ा अच्छा लगता है।
3: हाँ, तो फिर आप डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली ना दूसरों के शब्दों के ऊपर। जो अप्रिशिएट करे उसको प्यार से शुक्रिया दुआएं, लेकिन याद रखना ये उनका संस्कार है। और ऐसे भी हो सकता है कि कोई मन में आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है
2: लेकिन बोल में कर रहा है,
3: शब्दों में कर रहा है, तो वो भी हमें पता नहीं। लेकिन हम कितना किसी की भी वाहवाही लेकर अपने आप को बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं। हमें खुद खुद को इवैल्यूएट करना चाहिए
2: जी।
3: हमें खुद डिटैच्ड होकर अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहिए कि कैसा था वो प्रेजेंटेशन, या और फिर जो क्रिटिसाइज कर रहा है उसका आप फीडबैक ले लीजिए। फीडबैक आपके लिए है, क्रिटिसिज्म उनका संस्कार है,
2: वो बहुत जरूरी है, ये इनको सेपरेट करें।
3: लेकिन जब हम वो क्रिटिसाइज करके फीडबैक देते हैं ना,
2: हाँ।
3: तो हम फीडबैक भी नहीं लेते हैं क्योंकि हम क्रिटिसिज्म से ही हर्ट होते हैं। तो सपोज मेरे पास आपके लिए गिफ्ट है, वो गिफ्ट बहुत रियली वैल्यूएबल है आपके लिए, लेकिन मेरा देने का तरीका ठीक नहीं था। मैं आपके पास आई और मैंने कहा ये लो, तो वो मैंने दिया इतना गलत तरीके से कि आपने गिफ्ट खोल के ही नहीं देखा।
2: सही बात।
3: दिस इज व्हाट हैपेंस स्पेशली इन एन ऑफिस।
2: यस।
3: यू नो, सामने वाला बहुत आपके फायदे के लिए कोई आपको बात कहता है, लेकिन अगर उसका मन परेशान है, अगर कोई कड़वाहट भरी हुई है, तो उसका कहने का तरीका उतना रिस्पेक्टफुल नहीं होगा। तो तरीका उनका है, फीडबैक हमारे लिए है। तो सेपरेट द फीडबैक फ्रॉम द संस्कार ऑफ क्रिटिसिज्म। तो फिर आप फीडबैक को नहीं खोएं क्योंकि वो मेरी गिफ्ट थी, देने का तरीका उनका संस्कार।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 5G recharge mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आप भी नो नहीं बोल पाते? तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है. आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ.
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं. हमारे ऑफिस में एक बहुत सीनियर बंदे हैं और वो मुंह पे हमेशा हाँ बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे जाके बिल्कुल उसका उल्टा. सीनियर बंदे हैं, उनसे बहुत बार फीडबैक उनको दे दिया गया इस बारे में. और शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उनको परे कर सकते हैं, और सारी चीज़ों के बीच में भी बात. ऐसे लोगों से क्या करें? क्योंकि कई बार जब मैं सोचता हूँ कि चलो उनका संस्कार, उनको फॉरगिव कर देते हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, मुझे भी अपना काम करना है, उनके साथ मेरे डिपार्टमेंट को काम करना है. ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए?
3: वो ना नहीं बोल पाते, वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं.
2: अच्छा.
3: क्योंकि बहुत लोग ना नहीं बोल पाते हैं और बहुत लोग ना सुन नहीं पाते हैं.
2: हाँ.
3: है ना, कुछ लोग ना सुन के भी ऑफेंड हो जाते हैं.
2: हाँ.
3: कुछ लोग ना इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि वो दूसरे को ऑफेंड नहीं करना चाहते.
2: बिल्कुल.
3: एंड दिस इज अ संस्कार ऑफ सीकिंग वैलिडेशन. अगर मैंने आपको किसी चीज के लिए ना बोला, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने ना बोला, और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो फिर आपके अनुसार मैं अच्छी नहीं हूँ. ये मेरा बिलीफ सिस्टम है. तो इसीलिए भले मुझे वो ना लगता है, लेकिन मैं अच्छी हूँ ये आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको हाँ बोलती हूँ. वो आपके लिए है ही नहीं एक्चुअली, वो मेरी नीड है ऑफ वैलिडेशन. तो ये सामने वाले को पता भी नहीं होता कि ये क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ, लेकिन वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हर एक से एक अच्छी वो क्रिएट करना चाहते हैं. और उसमें उनकी गलती नहीं होती है, ये कभी कभी बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग हो गई होती है. मोस्ट केसेस में इट इज अ चाइल्ड.
2: Okay.
3: एक बच्चा है.
2: हाँ.
3: जिसका पेरेंट या
2: हाँ.
3: जिसका टीचर बहुत क्रिटिकल या बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत डिफिकल्ट टू प्लीज.
2: हाँ.
3: जिसको आप खुशी नहीं कर सकते हो. आप कितना भी परफॉर्म कर लो, आप 99/100 लिया, वो बोलेगा लेकिन
2: हाँ.
3: आपका ये एक नंबर नहीं है. जब बच्चा छोटा होता है ना, उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अभी तक वो सीख कर रहा है कि कब एक दिन
2: कोई अप्रिशिएट
3: वो मेरा पेरेंट या वो मेरा टीचर कहेंगे तो बहुत अच्छे हो. तो वो जो सीकिंग का संस्कार है ना, वो बहुत पुराना होता है. और वो इतना पुराना होता है कि हमको भी नहीं पता हमारा वो संस्कार कैसे बन गया है, लेकिन हम आज भी वो सीकिंग के मूड में हैं कि लोग मुझे कहें कि मैं अच्छी. वो बहुत डीप प्रोग्रामिंग होती है. तो वो अभी नहीं समझेंगे, लेकिन हमें समझ लेना चाहिए कि ये उनका संस्कार है.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: Workplace में open communication क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, क्योंकि हम ऑफिस की बात कर रहे थे, एक ऑर्गेनाइजेशन जब आप चलाते हैं तो सिर्फ समझने से तो काम नहीं चलता, हमको काम भी करवाना है।
3: आप उनसे ओपनली बोल सकते हैं कि हम तो रेडी है। आप बताओ, अगर ये गलत है तो हम अभी छोड़ देते हैं इसको। हम अभी इसको चेंज, गिव द पर्सन दैट थिंग कि आप सेम रहेंगे दिस वे और दैट वे। अगर आपने हमें अच्छा बोला या राइट बोला तो भी हम ठीक हैं। अगर आपने बोला कि हमने जो गलत किया उसको पूरा बदलना, हम भी ठीक। आप उनको ना, हम रोल को देखते हैं ना, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है ये करना। ओ, ये तो इतने बड़े हैं, इनको हम ऐसे क्यों बात करें। हम रोल को नहीं देखते हैं, हम व्यक्ति को देखते हैं। और हमें दिखता है कि ये छोटा सा बच्चा अभी तक वो घाव लेके चल रहा है, तो बस उसको उस नजरिए से देखकर एक तब ओपनली बोल दो कि आई एम परफेक्टली ओपन, आप मुझे बता दो कौन सी गलतियां। तो सामने वाले को शक्ति देनी पड़ेगी कि वो हिम्मत कर सके आपको डिसप्लीज करने के लिए, बाय अश्योरिंग हिम कि हम ऑफेंड नहीं होंगे, हमारी रिस्पेक्ट आपके लिए अभी भी उतनी है, आप हमारी गलतियां निकालोगे तभी भी उतनी ही है, आप हमें गलत कहोगे तो भी उतनी है। ये अश्योरेंस उस बच्चे को नहीं मिली थी। तो जब हमें दूसरों के संस्कार और मन की स्थिति समझ में आती है ना, भले वो हमारे रोल में सीनियर होंगे लेकिन मन अभी भी वो बच्चे का ही है, तो वो मन को अश्योरेंस दे दो कि वी आर एब्सोल्युटली ओपन। कि आप फीडबैक दो, आप गलतियां निकालो और हम आपके साथ ही बैठ के इसको करेक्ट करेंगे। एक बार, दो बार, इट्स लाइक किसी को पानी से डर लगता है। तो वो डरता है ना, कब भी कुछ हुआ होगा। उसको बहुत धीरे से पानी के पास लेके जाना पड़ता है, एक नई रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है आत्मा पर कि पानी इज कम्फर्टेबल, लिफ्ट इज कम्फर्टेबल। कभी कुछ हो गया तो लिफ्ट में जाने से डर लगता है, कभी कुछ हुआ तो फ्लाइट में। ऐसे ही करेक्शन देने से डर लगता है क्योंकि मुझे ना नहीं सुना।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: HG Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: कॉर्पोरेट दुनिया में ढाल क्या है और क्या हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए इस ढाल का इस्तेमाल करते हैं? आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: कभी कभी सिस्टर क्या होता है, कुछ लोग ढाल का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने एक बात की कि चलो कोई बच्चा बचपन में शायद बहुत एक परफेक्शनिस्ट बाप या गुरु के साथ पला बड़ा है, तो इसलिए उसको वैलिडेशन चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग होते हैं कॉन्फिडेंट होते हैं, सीनियर होते हैं एक्सेट्रा, वो बोलते हैं हाँ ठीक है, और जैसे उनको ईमेल का ढाल मिल जाता है ना, फिर वो बोलते हैं नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तुमको ऐसा करना चाहिए वैसा। वो बहुत जो वर्ड्स भी यूज करते हैं वो डरने वाले नहीं है, वीक वाले नहीं है, वो है कि भैया मुझे लगता है हमको ऐसा करना है, फिर आपको लगता है लेकिन हमने अग्री तो ये किया था, हाँ हमने अग्री किया था लेकिन ये सही नहीं है। सो दे आर नॉट इवन सेइंग कि हमने अग्री नहीं किया था, वो कह रहे हैं हमने किया था लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। और रेगुलरली जब हो तब कैसे हैंडल करें?
3: लैक ऑफ क्लैरिटी है ना थिंकिंग के अंदर, क्लैरिटी नहीं है थिंकिंग के अंदर और डिसीजन मेकिंग की शक्ति नहीं है, तो उसको हम कहेंगे फिकल माइंड, मतलब चेंज होता रहेगा ना बहुत बार मन। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, और आपने जो डिसाइड लिया, डिसीजन लिया, उसके ऊपर सर्टेनिटी भी नहीं है, फेथ भी नहीं है कि ये राइट होगा, तो दिस इज अ साइन ऑफ अ लिटिल, थोड़ा सा कमजोर मन है।
2: वो
3: मन
2: को शक
3: नहीं, आपको उनके साथ तो काम ऑब्वियसली करते ही जाना है, करते ही जाना है, बट ये भी हो सकता है कि जो डिसीजन लिया था कल उसको फटाफट से राइटिंग में डाल देना चाहिए। अब सपोज मेरी आज आपसे कोई बात हो रही है और मुझे पता है ये कल ना चेंज हो जाएगी, तो फिर मैं आज उसको राइटिंग में डाल के कि आज हमने ये डिस्कस किया था। इवन विद फैमिली, ये जरूरी नहीं है वर्क प्लेस पे होता, कोई भी हो सकता है ना कहीं पे, तो अपना फैमिली का व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना उस पे डाल देना आज हमने ये डिस्कस किया 1 2 3 4, तो सामने वाला जानबूझ के भी कई बार नहीं करता है, उसकी थॉट चेंज हो गई है अगले दिन या उसको फेथ नहीं है उस डिसीजन के अंदर, एंड इट डजंट मैटर कि हम चेंज करें अगली बार, लेकिन अगर वो हर बार हो रहा है तो then it's not about what we are doing, it's about my संस्कार। इसीलिए लिखत में रखना सामने वाले के लिए भी अच्छा होता है कि ये मेरी कल की थॉट थी और ये सबने एक्सेप्ट किया। एक बार, दो बार, 10 बार करेंगे, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: स्पिरिचुअलिटी में एम्पथी का क्या रोल है और दूसरों को समझना हमारे इनर ग्रोथ का हिस्सा कैसे बन सकता है, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, जब मैं आपसे बात करता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि हर चीज का बहुत सिंपल सोल्यूशन है। हम इतने वर्क्ड अप क्यों हो जाते हैं? हमको लगता है वो बदमाश है, वो करना नहीं चाहता, वो मुझे पसंद नहीं करता। आपसे जब बात करता हूँ तो आप बोलते हैं यार ये ऐसा है, अब लगता हाँ ये कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम क्यों नहीं कर पाते?
3: जो भी आपको कुछ परफेक्ट नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा, हम सब लोग कुछ कुछ चीजें परफेक्ट नहीं कर रहे ना, वो हमारे अपने संस्कार है। कोई जान पूछ के गलत नहीं करता है, कोई डेलिब्रेटली किसी को तंग करने के लिए गलत नहीं करता है। अगर आज कोई किसी पे जोर से चिल्ला रहा है, वो अपना दर्द बाहर निकाल रहा है, वो खुद उसके ऊपर घाव लगा हुआ है, उसका अंदर का कोई बहुत डीप वैक्यूम है। लेकिन जो वो चिल्लाना या डांट सुन रहा है, उसको ये नहीं लगता कि सामने वाले के अंदर कोई दर्द है। कहता है आप मेरे दर्द का कारण हो। तो हम हमेशा लोगों को ऐसे लेते हैं कि यू आर डूइंग दिस टू मी, आप मेरे दर्द का कारण हो, आप मुझे तंग कर रहे हो, आप मुझे डोमिनेट कर रहे हो। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाता है उनके बारे में सोचो पहले, एम्पैथी, कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं
2: जी।
3: तो उनके माइंड में घुस के चेक करो कि ये कौन सा संस्कार होगा जिसकी वजह से ये इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी नेगेटिव संस्कार, नेगेटिव मतलब अनकंफर्टेबल, हमारी कोई ना कोई पुरानी कमजोरी ही है। तो सामने वाला हमें नहीं तंग कर रहा है, वो खुद से बहुत तंग है। अगर हम दोनों हाथ ऐसे रखें, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, आप लेफ्ट हैंड पे उनको रखें जो कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उनकी शक्ति थोड़ी सी कम है,
2: ठीक है।
3: लेकिन हम उनके उस व्यवहार से डिस्टर्ब हो जाते हैं ना जब, तो फिर हमारी भी एनर्जी डाउन हो जाती है।
2: बिल्कुल।
3: अब जैसे ही हमारी भी एनर्जी डाउन होगी और हम उनको ब्लेम करेंगे उसके लिए, इनकी वजह से मेरा मन डिस्टर्ब है, तो हमारी नेगेटिव एनर्जी उनको जाएगी, वो और डाउन जाएंगे, और डाउन जाएंगे। हमें यहाँ होने की जरूरत है, हमें ऊपर होने की जरूरत है, हमें उनको शक्ति देनी है, हमें उनके संस्कार की वजह से अपनी शक्ति घटानी नहीं है। और सबसे पहले उसके लिए बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है कि वो गलत कर सकते हैं, लेकिन वो मेरी मन की स्थिति को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। वहां कोई किसी की एंट्री नहीं है, उसका रिमोट कंट्रोल किसी के पास नहीं है। इतना याद आएगा, आई टेल यू स्मॉल एग्जांपल। एक नर्सेस का प्रोग्राम था, सब नर्सेस थे, उनको कहा, उनका टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट था, उनको पूछा क्या कॉज ऑफ स्ट्रेस। मुझे लगा इतने सारे रीजंस होते हैं नर्स के पूरे दिन के अंदर, तो उन्होंने कहा नहीं, जब डॉक्टर गुस्सा करते हैं। मैं कहा वो कोई रीजन है स्ट्रेस का, पेशेंट इतना गुस्सा करते हैं? तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, सिस्टर उनका ना बिल्कुल बुरा नहीं लगता, वो बीमार है। परफेक्ट। तो मैंने कहा कल जब वो डॉक्टर आपको गुस्सा करेंगे, आप मन में एक थॉट क्रिएट करना, वो बीमार है। तो उन्होंने कहा बट वो तो बीमार नहीं है। मैंने कहा इमोशनली तो बीमार है ना, तभी तो कड़वा बोल रहे हैं ना, तो बीमार है। तो अगले दिन एक नर्स ने फोन किया, कहती वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, लेकिन उनको इतना परफेक्ट चाहिए होता है ओटी में कि कुछ भी, इंटेंशन बहुत अच्छी है लेकिन तरीका। सर आज फिर से आके उन्होंने जोर से चिल्लाया और मैंने फर्स्ट थॉट क्रिएट की, वो बीमार है। सर मैं ठीक रही, क्योंकि अभी तक मैं बोलती थी इतनी मेहनत की, आए और मुझ पर चिल्लाया। यू नो हम अपने पे ले लेते हैं। बट ब्यूटीफुल थॉट था उनका सेकंड वाला।
2: क्या बात।
3: उसके बाद मैंने थॉट क्रिएट की मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ।
2: वाह।
3: जब आप पेन कंज्यूम नहीं करेंगे ना दूसरे का, और आप खुद पेन नहीं क्रिएट करेंगे, आप दूसरे को शक्ति देने वाले बन जाते हैं। दैट्स एम्पैथी। तो लेकिन हम सबका अपने पे ले लेते हैं, ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, ये मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे, और हम सबकी वजह से अपने माइंड को डिस्टर्ब कर लेते हैं, और फिर हमारे से भी उनको वो नेगेटिव एनर्जी जाती है। तो हम सब एक दूसरे को एक्चुअली डिप्लीट करते जाते हैं, हम एक दूसरे को एनर्जाइज कर रहे हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रिचार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी क्यों कहती है कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को नहीं देना चाहिए?
2: आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में
1: ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
3: आपने बीच में एक बात कही और मैंने आपको एक वीडियो भी देखा था जहां आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को मत दो। मुझे वो बात इतनी अच्छी लगी बिकॉज बड़े संक्षेप में आपने बहुत खूबसूरत सी बात कह दी। तो ज्यादातर हम बहुत सारी चीजें करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशन को, इंसान को। ये जो खूबसूरत जो आपने बात कही कि दूसरों को रिमोट कंट्रोल मत दो, ये एमिनेट कहाँ से होता है और ये करना कैसे है?
4: एक्चुअली रिमोट कंट्रोल है ही नहीं किसी और के हाथ में। कोई मुझे तंग कर सकता है
3: जी।
4: कोई मेरे साथ झूठ बोल सकता है।
3: हाँ।
4: कोई मुझे धोखा भी दे सकता है, कोई मुझे एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। ये पावर दूसरों के पास है, लेकिन कोई मेरे मन में घुस के मेरी सोच नहीं बना सकता है। वहां कोई नहीं, कोई मुझे फिजिकली भी हिट कर सकता है, लेकिन यहाँ मेरे मन में घुस के कोई मेरी सोच नहीं बना सकता है। लेकिन ये हमको बचपन से किसी ने सिखाया नहीं, तो हमारी वोकैबुलरी बन गई। उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे अपसेट किया, उन्होंने मुझे गुस्सा किया, उन्होंने ये किया, हमने सब कुछ उन पर डाला। तो ऐसे करते करते हमारा माइंड सिचुएशन और लोगों के बिहेवियर पर डिपेंडेंट होने लगा, ये हमें लगा, क्योंकि हमने अपने माइंड की पोटेंशियल को यूज ही नहीं किया। हमने कहा उन्होंने गुस्सा किया, बुरा तो लगना ही था। अच्छा नहीं लगता तो चार लोग आसपास बोलते तुम्हें बुरा नहीं लगा, उन्होंने कितना गुस्सा किया। ये हमारी कंडीशनिंग हो गई। बट एक्चुअली आंख बंद करो, लास्ट टाइम देखो किसी ने आपको गुस्सा किया या आपने किसी को किया, आपके पास पांच ऑप्शन है आप कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे। आप चुप रह सकते थे, आप प्यार से जवाब दे सकते थे, कुछ नहीं तो आप कमरे से, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो ऑप्शंस कौन क्रिएट कर रहा है? हम क्रिएट कर रहे हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग द ऑप्शन। हम ऑप्शन सोचते ही नहीं, क्योंकि हम कहते हैं उन्होंने मुझे हर्ट किया। लोग हमें तंग कर सकते हैं, फिजिकली भी तंग कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं, मन में कोई नहीं घुस सकता है। तो रिमोट कंट्रोल देने का मतलब ही नहीं है, रिमोट कंट्रोल है ही नहीं किसी के पास। एक्चुअली हमारी ये भाषा है जो हम इसको रिपीट रिपीट रिपीट करते जाते हैं। एक बहन आई सेंटर पर 40 इयर्स ओल्ड राइट नाउ। जब वो 5 साल का बच्चा थी तो उसके पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने अपने किसी फैमिली फ्रेंड के साथ उस 5 साल की लड़की को छोड़ा। वहाँ कुछ गलत हुआ बहुत। तो जब वो आए वापस, वो 5 साल का बच्चा नहीं समझता बात को, तो वो 5 साल के बच्चे ने पेरेंट के अगेंस्ट होल्ड कर लिया कि मेरे पेरेंट ने वहाँ छोड़ा है ना। तो उसका पेरेंट के साथ रिलेशनशिप कभी अच्छा नहीं रहा। And because of what happened, उसके अंदर इतनी कड़वाहट भरी अबाउट द वर्ल्ड। उसने कोई रिश्ते नहीं जोड़े, लोगों पर विश्वास करना बंद कर दिया, बस अकेले अकेले अकेले। द वर्ल्ड इज नॉट नाइस। ऐसे 35 साल बीत गए। तो एक दिन वो मेडिटेशन रूम में बैठी थी और बाहर आई, एंड आई एम गिविंग यू हर एग्जैक्ट वर्ड्स, शी सेड, सिस्टर उस व्यक्ति ने जो किया उसने मेरे शरीर को अब्यूज किया एक बार 35 साल पहले। मैं 35 साल से अपने आप को अब्यूज कर रही हूँ और आज I let that person go. Life changed after that. उसका अपना पेरेंट्स के साथ रिश्ता चेंज हो गया, उसका खुद खुद की बॉडी के साथ रिश्ता चेंज हो गया, उसका everything changes. तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसने वो किया वो गलत नहीं था। वो तो गलत था ही, उस पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, लेकिन हम मन पर उसको कितना पकड़े, कैसे पकड़े, उसकी वजह से हम खुद के साथ गलत करते। तो खुद से प्यार करना सीखें, खुद का ध्यान रखना सीखें। बी काइंड टू योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, डोंट सिट एंड वेट फॉर द वर्ल्ड टू बी नाइस टू यू। अगर आप अपने आप के साथ अच्छे होते हैं ना, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: She Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shivani. Only on Mirchi. It's hot.
1: याद रखिए, डर आपको अच्छे काम करने से रोक सकता है, लेकिन इस डर से आगे कैसे बढ़े, आइए जानते हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा के इस स्पेशल एपिसोड में ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी और विशाल सेठिया के साथ।
2: सिस्टर, हाल फिलहाल में ना बॉम्बे की लोकल ट्रेन में एक बहुत बुरा हादसा हुआ। दो लोग गेट पे खड़े थे चलती ट्रेन में और बारिश हो रही थी। एक ने कहा दरवाजा बंद करते हैं, दूसरे ने कहा नहीं करते। झगड़ा हुआ, लोगों ने उनको अलग किया। एक बंदा गया, उसके पास चाकू था, वो आया, उसको दूसरे वाले को खून कर दिया। ये सारी चीजें होती हैं, पढ़ते हैं आप, आपको ऐसा लगता है कि कैसे हो रहा है। मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनको अलग पहली बार किया था, लेकिन जब वो बंदा वापस चाकू लेके आया और जब वो उस पे वार कर रहा था, उस समय लोगों ने वीडियो बनाया, हेल्प नहीं किया। एक शायद सोच ये है कि इसके पास चाकू है, मुझे भी मार सकता है, शायद इस वजह से लोगों ने इंटरवीन नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग थे ऐसा सिचुएशन, अगर हो, क्योंकि हो कुछ भी सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, जब मैं उस लोकल ट्रेन में हूँ, मैं क्या करूँ उस वक्त?
3: अगर इतने सारे लोग थे तो आसानी से एक व्यक्ति को ओवरपावर कर सकते थे। फियर ना,
2: हाँ,
3: तो फियर का संस्कार है, बट फोन निकाल के उसको रिकॉर्ड करना, ऑफ कोर्स, बट मे बी ये पर्सपेक्टिव से भी रिकॉर्ड हो रहा है कि उसको प्रूफ की तरह दिखाना है, देन दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर उसको सोशल मीडिया पे डालने के लिए रिकॉर्ड हो रहा है तो वो इंटेंशन ही पूरी तरह से गलत है। बट फियर, तो वो फियर हमारी अपनी स्ट्रेंथ हमें यूज करने नहीं देता ना, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि मेरे साथ नुकसान होगा। अगर कोई अकेला होता तो हो भी सकता है, लेकिन इतने सारे लोग अगर इकट्ठे थे वो इजीली उस व्यक्ति को ओवरपावर कर सकते थे, बट फिर वो यूनाइटेड होकर करना पड़ता है ना।
2: तो इसके बाद ना मैंने कई लोगों से पूछा कि आप होते तो क्या करते। आप होते, कुछ लोग थे बिल्कुल मैं हेल्प करता, और कुछ लोग बिल्कुल चांस ही नहीं, भैया मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे को कौन देखने आएगा। तो when we are divided as a society in one small little thing,
3: yes,
2: how do we bring people together for a good cause?
3: Divided to hamesha honge kyunki har ek ki soch alag hogi. It's not society, aapke ghar pe bhi har ek ki soch alag
2: hai. Bilkul.
3: तो क्योंकि दो लोग एक जैसा नहीं सोच सकते किसी भी एक चीज के बारे में, दो लोग एक जैसा नहीं सोचेंगे, क्योंकि दोनों के जो इंटरनल संस्कार रिकॉर्डेड हैं, आप हर सिचुएशन को उसी नजरिए से देखेंगे। तो नो टू पीपल एक जैसा सोचेंगे हमेशा। हाँ, कोई चीजों पे हमारी सोच मैच कर सकते है, कोई पे नहीं, क्योंकि वो हमारे संस्कारों पे डिपेंडेंट है। तो इकट्ठे आना फॉर अ गुड कॉज डजंट मीन कि हमारी सोच एक जैसी है हर टॉपिक के ऊपर। इट जस्ट मीन्स हमारे पास एक प्योर इंटेंशन है। सोच अलग होगी लेकिन एक प्योर इंटेंशन है कि हमें ये अच्छा काम करना है। अब वो काम करते समय हम सबकी सोच अलग अलग होगी, डिफरेंसेस भी आएंगे, मतभेद भी होगा, लेकिन जब इंटेंट एक होता है ना, तो वो इंटेंट वो धागा बन जाता है जो सबको जोड़ के मैजिक क्रिएट कर लेता है। सिर्फ ये चेक करना है इनका और मेरा इंटेंट एक है ना, तो उसके लिए मैं अपनी एक सोच को छोड़ने के लिए भी रेडी हूँ, मैं अपने ईगो को बेंड करने के लिए भी रेडी हूँ। इंटेंट सेम होना चाहिए, तो फिर सोच को चेंज, मोल्ड, एक्सेप्ट किया जा सकता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी, सिस्टर शिवानी, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। आज है सितंबर द 11th एंड व्हाइल वी होल्ड अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड डीप सॉलेम्न थॉट्स फॉर आवर होम ग्राउंड, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट एल्स वेंट डाउन ऑन दिस डेट इन हिस्ट्री। बैक इन 1841 एन इन्वेंटर पेटेंटेड द कोलैप्सिबल पेंट ट्यूब बिकॉज कैरियिंग रॉ पेंट इन पिग ब्लैडर्स वॉज नॉट गिविंग एस्थेटिक वाइब्स। Fast forward to 1997, Scotland voted to establish its own parliament. And 2007 May, Russia tested the father of all bombs by what a name. Definitely sounds like an angry Desi dad returning home. And then came 2001, a date that changed the world forever. 19 Al-Qaeda militants hijacked 4 commercial planes, 2 crashed into New York's World Trade Center, 1 hit the Pentagon, and United Flight 93 crashed in Pennsylvania after passengers and crew fought back against the hijackers. Total 2,977 innocent people were killed. And today we remember the lives lost and the courage of those who fought back. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और हमने देखा आज का दिन हिस्टोरिकली क्यों सिग्निफिकेंट है। तो मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, 9033 मिर्ची इज माई नंबर, दैट्स 9033647244। एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। अभी फिलहाल सुनते रहो मिर्ची, स्टे विथ मी, स्टे ट्यून्ड।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपनी अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, वह जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जो धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगा है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my beautiful people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings पर weather check. Right now we are at 71 degrees Fahrenheit. Skies are mostly cloudy. लेकिन feel हो रहा है 72 degrees Fahrenheit की तरह because of humidity, wind and sunlight. And the good news is there was no rain in the last 24 hours. And the better news is that there is going to be no rain in the next 24 hours as well. So आज अम्ब्रेला को फिर से छुट्टी दी जा सकती है. We are looking at a low of 66 degrees Fahrenheit and a high of 82 degrees Fahrenheit today. And compared to yesterday's 87 degrees Fahrenheit, आज का high थोड़ा सा cooler है. And also दोपहर के 1 बजे के आसपास sunshine जो है, it's expected to make an appearance in life. क्योंकि finally clouds बोलने वाले हैं, okay bye guys. And hey, अभी अगर तुम बाहर निकलने का plan कर रहे हो, you're going to run some errands or you're going out, then you carry your water with you, keep yourself hydrated, wear your SPF 50 plus plus plus वाला sun protection and साथ साथ में मिर्ची की vibes बना के रखो. मैं बोलूँ तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. कनेक्ट करो मुझसे व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244. एंड मिर्ची प्रिज इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. अभी मिर्ची दे आर बैंगर्स बरसने वाले तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Welcome to Mirchi Hour ka 3. Main hu Priscilla tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. सबसे पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड प्रपोज्ड $5,000 डिविडेंड फॉर अमेरिकन एडल्ट्स एंड नेचुरली सोशल मीडिया स्टार्टेड डूइंग व्हाट सोशल मीडिया डज बेस्ट कंपैरिजन शॉपिंग सम यूजर्स कंपेयर्ड द आइडिया विद कैश ट्रांसफर स्कीम्स अनाउंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया पॉलिटिक्स का यूनिवर्सल फॉर्मूला है कैश की बात हो तो पब्लिक सडनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाती है नंबर टू पर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज प्रपोज्ड रिमूविंग द एग्जिस्टिंग 60-day ग्रेस पीरियड फॉर फॉरेन वर्कर्स इंक्लूडिंग H-1B employees after they lose their jobs. That could have a significant impact on Indian professionals in the US. Now understand this is a proposal. Right now it's not a final rule. And lastly, Apple ne foldable phones nikale hain aur wallet ne kaha hai main fold kar raha hoon. Apple's new iPhone 2 reportedly starts at 299,900 rupees in India while the 256GB model is listed at 1,990 $9 in the US. And that's it for Mirchi Hour ka 3. At this hour, main hu Priscilla tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp ka number hai 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ, वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: एक्चुअली आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू कु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची बायोस्कोप साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो जी, टाइम आ चुका है पता करने का कि गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,325. $4,325 पर ट्रायंस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। कल से मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड पर है और एक डेफिनेटली एंट्री पॉइंट बढ़ता है इन्वेस्टमेंट गोल्ड बार्स के लिए। 1 ounce, 10 ounce, 100 grams, किलो बार, PAM सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार अवेलेबल एट राज ज्वेल्स। आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें RajJewels.com के साथ। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
0: सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Milci. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La
1: vieva la burga. Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आज जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा
2: वाला,
1: तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
2: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: तेरी मम्मी की जय।

0: போய் பாதிஷாங்
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट।
2: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में राशि जोन नंबर वन में तुम्हारा स्वागत है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
3: मिर्ची राशि जोन
2: एरीज यानी मेष राशि, कॉन्फिडेंस इज अप, बस कॉन्फिडेंस को ईगो का कजन मत बनने देना। स्टे ओपन, पर्सनल लाइफ में कुछ एक्साइटिंग डायनामिक्स डेवलप हो सकते हैं। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी वृषभ राशि, किसी की इंटेंशन समझ नहीं आ रही, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड और रिलीफ दोनों स्लोली कमिंग योर वे है। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, कम्युनिकेशन इज योर सुपर पावर टुडे, क्रिएटिव आइडियाज शेयर करो बिकॉज फ्रेश डोर्स कैन ओपन एंड home priorities, time for a little reset. Lucky color is sky blue, lucky number is 23. Cancer yani karak rashi, heart feeling heavy lately, fresh emotional energy is coming in, family matters mein warmth or renewal, bas dil ko thoda sa breathing space do. Lucky color is pearl white, lucky number is 9. Leo yani ki siha rashi, today putting yourself first is not selfish, it's smart. प्रायोरिटीज सेट करो, रूटीन फिक्स करो और अपनी वेलबींग को वीआईपी ट्रीटमेंट दो। लकी कलर इज मैरी गोल्ड, लकी नंबर इज 31। वर्गो यानी खन्या राशि, रेस्ट एंड रिफ्लेक्ट मोड से अब ऑर्गेनाइज एंड एक्शन मोड में आ जाओ। प्रैक्टिकल हेल्थ रूटीन्स बनाओ एंड आउटडेटेड एक्सपेक्टेशंस को पोलाइटली अनसब्सक्राइब करो। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 14। एंड दैट वाज योर राशि जोन पार्ट वन। अभी तो मिर्ची दार बैंगर्स सुनो और मुझे जाकर फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप करो 9033647244 पर। मैं लेकर आती हूँ मिर्ची का राशि जोन पार्ट टू इन जस्ट अ वाइल, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. Buckle up for your Rashi Zone Part 2 only on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: Libra यानी कि तुला राशि, रीसेंट ड्रामा ने दिमाग का वाईफाई स्लो कर दिया है. और मैच्योर पर्सन की एडवाइस क्लैरिटी ला सकती है. कीप इट प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एंड ड्रामा को सीन पर छोड़ दो. लकी कलर इज टील. लकी नंबर इज 28. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, मल्टीपल प्रायोरिटीज, यू हैव गॉट दिस बेबी. प्लस अ कैजुअल न्यू कनेक्शन और अ पॉजिटिव शिफ्ट इन फ्रेंडशिप कुड मेक योर डे इंटरेस्टिंग. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, योर अनयूजुअल अप्रोच कुड कैच द अटेंशन ऑफ समवन हायर अप. नाइस. बस कोवर्कर्स के कमेंट्स को पर्सनली नहीं लेने का एंड प्रोटेक्ट दैट मेंटल पीस. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर 35. Capricorn यानी मकर राशि, today is about compassion and emotional awareness. Recent challenges may be changing how you see the bigger picture and honestly, growth का यही तो point है. Lucky color is forest green. Lucky number is 19. Aquarius यानी कुंभ राशि, surprise, an unexpected gift or helpful offer could brighten your day. The responsibilities थोड़ी सी heavy हैं, लेकिन hey, free help को universe का accept button समझो. Lucky color is peach. Lucky number is 42. And last but not the least, Pisces yani ki Meen Rashi, romance and emotions are swimming around today. Very on brand Pisces. Say what you feel, clear the air and maybe finally get that closure you've been waiting for. Lucky color is rose pink. Lucky number is 7. And there you have it. Your Rashi Zone Part 2 is done. Lekin Mirchi Mornings is still on. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Mujhe follow karo Insta aur X pe. Mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp par mera number hai 9033647244. Abhi ke liye suno Mirchi Dar bangers. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बा देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक और त्योहार है, हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जनरली ना गुलजार साहब आंखों से बहुत खिलते थे, लेकिन इस गाने में, और मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सॉन्ग्स ऑफ आंखें, ये आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, गुलाबी आंखें। नोबडी एवर थॉट कि आंखें भी गुलाबी हो सकती हैं। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, हेलो हेलो वेलकम। ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म द ट्रेन, एंड ये काका की यानी राजेश खन्ना साहब की कंसेक्यूटिव 17th फिल्म थी, विच वाज अ सुपर डुपर हिट। उस समय ना काका का सिक्का एकदम बॉक्स ऑफिस पे चल रहा था, एवरीबडी वांटेड टू वर्क विद राजेश खन्ना। सो इस फिल्म को राजेंद्र कुमार ने प्रोड्यूस किया था और नंदा जी ने इसमें काम किया है। सो नंदा जी उस टाइम पे ना राजेश खन्ना

समय धमाल कमाल मचा रहा है. सो दैट वाज हाउ राजेश खन्ना केम इन द पिक्चर. एंड देन जब ये फिल्म रिलीज हुई, ओहो हो द ट्रेन, इट वाज अ सुपर डुपर मैसिव हिट. इसी फिल्म का गाना श्रेया ने आते ही सुनाया. अगले कौन से गाने सब एक एक करके सुनाऊंगी, जल्दी किस बात की है. ये पूरे 3 घंटे पुरानी जीन्स के ऑन मिर्ची, आपके नाम मेरे नाम. सो कम राइट बैक.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो मुकेश जी।
2: कौन?
1: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा।
2: नहीं हो पाया भाई?
1: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
2: क्यों नहीं पाया?
1: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
2: हाँ
1: सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
2: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज गए तुम्हें जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया क्या मजाक ही क्या है ये?
1: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो
2: क्या समझ रहे हो भाई।
1: नहीं

0: आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
0: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये हो पाया वो नहीं हो पाया।
0: नहीं सर
1: actually... आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
0: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
0: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है?
0: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
0: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
0: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
0: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे, आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
0: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया,
1: उसमें
0: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
0: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
0: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
0: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
2: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
2: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप पे, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू-कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मिर्ची पर आप और श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। बॉबी फिल्म का ये गाना जिसको शैलेंद्र सिंह ने गाया, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। एंड जब बॉबी फिल्म की बात आती है ना, तो ऑफ कोर्स मैं तो थी नहीं जब ये फिल्म रिलीज हुई, लेकिन मेरी मम्मी बताती है कि क्या क्रेजीनेस हुई थी टू वॉच दिस फिल्म। आई मीन देयर वर फैमिलीज जो वापस बार बार जा रही थी मूवी देखने, हॉल्स भरे हुए थे महीनों तक। एंड इतना ज्यादा ट्रेंड चला था बॉबी जूड़ा पिंस का, जो मुझे लगता है मुझे आज भी कई बार दिखती हैं वो जो जूड़ा पिंस है। सो शी सेड कि बॉबी नाम पे इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए थे कि एवरीबडी वॉज वेयरिंग कोई ना कोई बॉबी का प्रोडक्ट। जैसे कि बॉबी में यू नो डिम्पल कपाटिया ने बहुत जगहों पे पोलका डॉट्स पहने, वो आज तक फेमस है एज बॉबी पोलका डॉट्स। जैसे कि बॉबी जूड़ा पिन तो मैंने आपको बताई, जैसे कि बॉबी बाइक जिसपे उड़ा के लेकर के जाते हैं ना ऋषि कपूर डिम्पल कपाटिया को, वो बाइक भी एक्सट्रीमली फेमस हुई थी और रातों रात उसकी बिक्री बढ़ गई थी। ये होता था उस जमाने की फिल्मों का क्रेज जो इस जमाने में नहीं मिलता। करेक्ट, पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ उस जमाने के गाने, इस जमाने की श्रेया। सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

किशोरदाना बाकी सबके लिए रूल्स फॉलो करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता था कि ये गाना उनके दोस्त पे पिक्चराइज होना है तो फिर सारे रूल्स ड्रॉप। वेल, ये जो गाना अभी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म नमक हराम, विच इज पिक्चराइज ऑन काका यानी राजेश खन्ना। और काका और किशोरदा और पंचमदा, इन तीनों की तिकड़ी भाई इंडस्ट्री में धमाल कर रही थी, कमाल कर रही थी। काका का ये रूल था कि उनके सारे गाने किशोरदा गाएंगे, और किशोरदा भी हैप्पीली अपने दोस्त के लिए सारे गाने गाते थे। मतलब बाकियों के लिए तो उनके पास फिर भी रूल्स थे कि क्या गाने का पैसा ऑलरेडी एडवांस में पे हो चुका है, जब हो जाता था तभी वो रिकॉर्डिंग सेशन में, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अंदर घुसते थे। लेकिन जब बात होती थी काका की तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाता था। One major reason was also because both of them saw the success in their careers together. वो गाना है ना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आरडी बर्मन साहब ने गाना कंपोज किया और इसको गाया ऑफ कोर्स किशोरदा ने, और इस पे ये किस पे पिक्चराइज था, काका पे। सो होता ये है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो इससे पहले किशोरदा ने जितने गाने गाए थे ना वो इतने पॉपुलर नहीं हो रहे थे। आर डी बर्मन साहब ने उनसे कहा था, किशोर बस ये आखिरी गाना है, अगर तुमको इस गाने के साथ सक्सेस नहीं मिली तो तुम्हें जो करना है करना, अगर तुम्हें अपने गांव वापस जाना है तो वहां भी ले जाना। लेकिन इस एक गाने ने किशोरदा की तकदीर बदली एंड ऑफकोर्स काका बिकेम अ सुपरस्टार। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। सो कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

रेखा जी और विनोद मेहरा की ये फिल्म का गाना है जो अभी अभी मैंने आपको सुनाया, पुरानी जीन्स पे, आप और श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची। एंड ये गाना इज फ्रॉम द फिल्म घर, जिसमें रेखा जी थी, विनोद मेहरा थे। लेकिन रेखा जी से पहले इस फिल्म की एक्ट्रेस होने वाली थी मौसमी चैटर्जी। मौसमी चैटर्जी और विनोद मेहरा का उस टाइम पे ना बड़ा रूमर्स थे कि दे आर सीइंग ईच अदर। और भाई उस टाइम तो फिल्म मैगजीन्स ऐसे छटपट बिकती थी कि पूछो नहीं। सो हर फिल्म मैगजीन में उनके बारे में लिखा जा रहा था। मौसमी चैटर्जी को लगा कि भाई ये तो बेसलेस है, एंड अगर मैंने इस समय विनोद मेहरा के साथ काम किया तो फिर इन रूमर्स को और हवा मिल जाएगी, एंड दैट्स व्हाई शी डिनाइड डूइंग द रोल। और फिर ये गया रेखा जी के पास, जो उस समय इनिशियली अपना करियर बिल्ड कर रही थी। और जैसे ही उनको ये गुलजार साहब की फिल्म मिली, उन्होंने झट से पकड़ ली। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ किशोरदा का ये गाना था। अब आ रहा है किसका गाना, ये बहुत अलग गाना है, खुद सुन लो।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनमोहन देसाई की डायरेक्टेड ये सुपर हिट फिल्म जिसका गाना अभी आपको सुनाया, दिस इज फ्रॉम द फिल्म अमर अकबर एंथनी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग गुफा पे इस फिल्म में बताती हूँ आपको व्हाट हैपेंड। तो अगर आप ये फिल्म देखोगे ना, सो नीतू सिंह और ऋषि कपूर का जो इंट्रोडक्शन सीन है उसमें नीतू सिंह प्लेज अ डॉक्टर रोल। इस डॉक्टर का कैरेक्टर नेम है डॉक्टर सलमा। लेकिन जब ऋषि कपूर नीतू सिंह से पहले सीन में मिलते हैं तो वो उन्हें डॉक्टर सलमा नहीं कहते, वो उन्हें नीतू कहते हैं। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज कि मूवी की एडिटिंग हो गई, मूवी रिलीज हो गई, देयर वाज नो एफर्ट टेकन टू एक्चुअली यू नो रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। मतलब लोगों ने बस जाने दिया कि हाँ ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि इस गूफअप को जो हम सब नोटिस कर सकते हैं वो किसी ने नोटिस नहीं किया हो। ऑफ कोर्स डायरेक्टर, कैमरामैन या एडिटर किसी ने तो किया होगा, बट उस टाइम के लोग ना इमोशंस पे ज्यादा जाते थे मुझे ऐसा लगता है, रादर देन यू नो गोइंग बाय द बुक्स कि इस चीज को ऐसे ही शूट करना है, उस चीज को ऐसे ही शूट करना है। अरे फ्लो फ्लो में निकल गया यार, इमोशन तो इंटैक्ट है। पुरानी जींस में, दिस इज मी श्रेया, कम राइट बैक।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
4: हाँ जी
5: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
4: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
5: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
4: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
5: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिखा दिए यार। सारे दिमाग
4: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
5: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
4: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
5: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
4: अरे शर्म की क्या बात है सर,
5: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
4: किसी का
5: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
4: लगाया नहीं।
5: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो। कपड़े
4: गायब नहीं।
5: मैं कल को
4: फोटो खींचे।
5: अरे लेंस ऐसे
4: पूरे
5: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
4: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
5: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
4: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसलिए हमारा नाम है इलाके में।
5: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
4: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
5: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
4: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
5: गड़बड़
4: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
5: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
4: दिखाइए
5: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
4: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
5: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
4: कहाँ होता है बताइए?
6: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
8: इट्स पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सूरज बड़जात्या ने नूतन जी को प्रॉमिस किया था कि उनके बेटे का कैरेक्टर बहुत ही सॉलिड निकलेगा, इवन दो ही इज प्लेइंग द व्हाट डू आई से, ही वाज एक्चुअली प्लेइंग एन एजुकेटेड विलेन. पुरानी जीन्स पे फर्स्ट श्रेया के साथ, एंड ये जो गाना है इज फ्रॉम द फिल्म मैंने प्यार किया. इसमें अपना डेब्यू करने वाले थे मुनीश बहल. डेब्यू क्या, उससे पहले भी उन्होंने फिल्में की थी जिसमें ही वेंट अननोटिस्ड. अब ये सूरज बड़जात्या की जो फिल्म थी जिसमें सलमान खान अपना डेब्यू कर रहे थे, भाग्यश्री अपना डेब्यू कर रही थी, उसके बीच में नूतन जी का बेटा जो है वो विलेन का कैरेक्टर प्ले करेगा, ये बात नूतन जी को समझ नहीं आ रही थी. तो उन्होंने ना सूरज बड़जात्या जो कि उनके बहुत क्लोज दोस्त थे उनसे जाकर के रिक्वेस्ट की कि क्यों नहीं मेरे बेटे का रोल चेंज कर दे रहे हो, उसे कोई और रोल दे दो, उसे वो दोस्त वाला रोल दे दो, सलमान के फ्रेंड वाला. लेकिन सूरज बड़जात्या ने कहा कि तुम्हारे बेटे का रोल विल बी एच्ड इन हिस्ट्री, लोगों को याद रहेगा, मैं इतना सॉलिड बनाऊंगा. एंड इट एक्चुअली हैपेंड. मनीष बहल का रोल इन दिस फिल्म वाज आइकॉनिक, मतलब लोगों को आज भी याद है. लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इस फिल्म का पहले नाम होने वाला था राग रागिनी, लेकिन फिर ऋषिकेश दा को लगा कि नहीं यार, कहीं लोगों को इससे गलत इन्फॉर्मेशन ना मिले कि द फिल्म इज ऑल अबाउट म्यूजिक एंड लोग देखने ही ना है। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जगाना भी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म अभिमान, यानी बच्चन साहब की फिल्म एंड ऑफकोर्स जया जी की फिल्म। तो ऋषिकेश दा जब ये फिल्म बना रहे थे ना, इनफैक्ट जब वो क्लैप्स होती है ना, मुहूर्त होता है, उसमें भी लिखा गया था राग रागिनी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे फिल्म स्टार्टेड प्रोग्रेसिंग, ही स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं, अगर हमने इसका नाम राग रागिनी रखा तो लोगों को ये लग सकता है कि सिर्फ म्यूजिक पे फिल्म होगी, और इसकी वजह से फिल्म का असली असेंस, अभिमान या फिर ईगो प्रॉब्लम ले लो, वो कहीं छूट ना जाए। द प्राउड दैट ही वॉन्टेड टू शो बिटवीन यू नो अमंग्स रिलेशनशिप, एंड दैट्स वाई ही चेंज द नेम, उन्होंने राग रागिनी से हटा के इसे रखा अभिमान। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, इन केस मुझसे कुछ बात करनी है, कोई शिकायत भी करनी है तो एकदम धड़ल्ले से कर सकते हो, फेसबुक एंड इंस्टा माई हैंडल इज RJ Shreya With Love, that's RJ SHREY With Love।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं। ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी के प्रीमियर पे ना इंडस्ट्री के सारे दिग्गज आते थे, और जब फिल्म खत्म हो जाती थी तो ना अगर उन्हें अच्छी लगती थी तो वो जाकर के अप्रिशिएट करते थे, नहीं अच्छी लगती थी तो भी बिना कुछ कहे निकल जाते थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। इस फिल्म के प्रीमियर पे राजेश खन्ना साहब को कोई पूछ भी नहीं रहा था, ही वॉज द हीरो ऑफ द फिल्म। स्टिल आराधना की बात कर रही हूँ जिसका गाना भी मैंने आपको सुनाया। तो कहते हैं कि काका ना वो जो स्टेज होती है ना, सीढ़ियाँ होती हैं, उस पर कोने में खड़े हुए थे। भाई इंडस्ट्री के लोगों ने उन्हें देखा बट इग्नोर कर दिया, बिकॉज इस फिल्म से पहले काका की सारी फिल्में फ्लॉप हुई थी। बट आफ्टर दे वॉच द फिल्म एट द प्रीमियर, एवरीबडी स्टार्टेड आस्किंग कहाँ है खन्ना, कहाँ है खन्ना। दैट हैपेंड क्योंकि लोगों को पता चल गया था, ओहो राजेश खन्ना हैज अराइव्ड आफ्टर आराधना। पुरानी जीन्स पे उस जमाने के गाने और बातें तो चलेंगी, लेकिन मैं कौन हूँ ये याद रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। रोज रात में मिलती हूँ, मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: दीवाना

रोल चाहे जितना भी खास हो, जितना भी मीठी हो, लेकिन उस जमाने के एक्टर्स दोस्त हुआ करते थे और इस कदर की दोस्ती निभाते थे कि जाकर के पूछते थे, अरे ये रोल तू नहीं कर रहा क्या, क्यों, क्या रीजन है? पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ ये जो गाना अभी आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म तीसरी मंजिल। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे नासिर हुसैन साहब और फिल्म में मेन लीड करने वाले थे देव साहब। अब हुआ ये कि दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ जिसकी वजह से देव साहब लेफ्ट द फिल्म। अब नासिर हुसैन साहब शम्मी कपूर के पास गए इस फिल्म का मेन लीड का रोल लेकर के। ही प्रपोज द रोल टू हिम। शम्मी साहब जो उस समय डायर नीड ऑफ अ गुड रोल थे, यू नो, एक अच्छी फिल्म टू बी डायरेक्टेड बाय अ गुड डायरेक्टर, कि उनके करियर का ग्राफ उड़े, वो चाहते थे ये रोल, दिल ही दिल में बहुत ज्यादा चाहते थे। लेकिन पता है उन्होंने क्या किया? देव साहब क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने देव साहब को कॉल किया और ये कंडीशन उन्होंने नासिर हुसैन के सामने भी रखी कि अगर देव देव विल बी ओके विद इट तभी मैं ये रोल करूंगा। सो भाई उन्होंने कॉल किया, देव साहब ने कहा हाँ हाँ कर ले, तेरा ही रोल था वो। तब शम्मी साहब ने इस फिल्म में स्टार किया एंड द मूवी वॉज अ सुपर डुपर हिट, वन ऑफ शम्मी कपूर्स मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स। रफ़ी साहब ने गाना गाया पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। ऐसे बहुत सारे किस्से एक एक करके शेयर करूंगी, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम। मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
2: क्या तुझे पागल
3: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
2: मेरी
3: बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
2: मैंने सोचा यार रिक्शा
3: मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया की डेब्यू फिल्म बॉबी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ शैलेंद्र जी ने गाना गाया। एंड ऋषि कपूर जब ये फिल्म बनने वाली थी उससे पहले एक ट्रेनिंग सेंटर जाया करते थे, काइंड ऑफ अ जिम। ओके, उसमें उनकी जो ट्रेनर थी शी वॉज अ पारसी गर्ल जिसका नाम था यास्मिन, एंड ही फेल इन लव विथ हर। आई मीन वो उनका पहला प्यार थी। अब जब ऋषि कपूर की फिल्म रिलीज हुई एंड ही बिकेम अ ह्यूज स्टार, तो कुछ कारणवश दे बोथ पार्टेड वेज। कहते हैं कि ऋषि कपूर थोड़े एरोगेंट भी हो गए, थोड़ा कम टाइम भी दिया, जिसकी वजह से दे बोथ ब्रोक अप। अब असली बात क्या थी ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली पता है दैट यास्मिन वॉज गॉर्जियस, शी वॉज प्रिटी, शी वॉज ब्यूटिफुल, और ये ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में भी लिखा है। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

रजिया सुल्तान का ये गाना वो जिस संग में लता जी ओनली ऑन पुरानी जीन्स, मैं हूँ श्रेया। अच्छा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई थी। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि फिल्म में उर्दू का बहुत ज़्यादा यूज था। कुछ लोग इसका कारण कहते हैं कि कमाल अमरोही जिन्होंने ये फिल्म बनाई थी, उन्होंने फिल्म को बनाने में बहुत साल लगा दिए। ही टुक 5 years टू मेक द फिल्म। जब ये फिल्म फ्लॉप हुई तो भाई इंडस्ट्री ने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज किया और ये भी कहा कि इंडस्ट्री को एज द एंटायर इंडियन सिनेमा की इंडस्ट्री को डेट में लाने वाले कमाल अमरोही साहब की ये फिल्म थी। बट कमाल अमरोही मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट। उन्होंने कहा कि 5 साल तक फिल्म का जो प्रोडक्शन हाउस था, फिल्म के जो कास्ट एंड क्रू थे, फिल्म का कैमरामैन, लाइटमैन, एवरीबॉडी, सबको काम मिला अपना घर चलाने के लिए। और मुझे तो ये फिल्म बहुत पसंद है। आई मीन, हेमा मालिनी ना आपको एकदम अलग ही अवतार में दिखेंगी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

0: पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ चले जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट सिर्फ गाना नहीं है, जीवन की सच्चाई है, जो बस अगर लाइफ में एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो ना, लाइफ इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी सिंपल। और वो क्या है?
1: छोटे से ही हम भी बड़े दिल वाले।
0: एब्सोल्युटली, जीवन के दिन छोटे ही से हम भी बड़े दिल वाले। लता जी के आवाज में गाना कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट। मैं जाती हूँ, कल मिलने फिर से आती हूँ। इन केस यू वांट टू रीच आउट टू मी, फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA विद लव। बाय।

0: भाई प्लीज कोई नेहा कक्कड़ को उनके डिलूलू से निकालो।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नहीं, जिस हिसाब के स्टेटमेंट्स उन्होंने सुनिधि चौहान के लिए दिए हैं, उसके हिसाब से तो मेरे दिमाग में बस यही थॉट आ रहा है कि ये दीदी जो है बहुत मेजर लेवल के डिलूलू में जी रही है। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि सुनिधि चौहान ने एक पॉडकास्ट में बोला कि भाई आजकल के म्यूजिक रियलिटी शोज जो है वो फेक कंटेस्टेंट्स को यूज करते हैं एंड दे रिलाई हेविली ऑन ड्रामा एंड आर मैनिपुलेटेड बाय मेकर्स, इसीलिए उन्होंने इन म्यूजिक रियलिटी शोज से डिस्टेंस कर लिया। जिसके ऊपर नेहा कक्कड़ का स्टेटमेंट आया कि ओह, सुनिधि चौहान के हाथ अंगूर नहीं आए इसीलिए उनके लिए अंगूर खट्टे हैं। अच्छा जी, नेहा दीदी हमारी इंडस्ट्री में फिलहाल सबसे ज्यादा रिलेवेंट अगर कोई चल रहा है तो वो आप हैं, और ऊपर से आप द क्वीन सुनिधि चौहान के बारे में ऐसी बातें अगर बोलेंगे तो भैया बीच समाज में आपको बेइज्जती तो जरूर झेलनी पड़ेगी। वो क्या है कि ना तो हमारे सुनिधि को लॉलीपॉप वन लॉलीपॉप टाइप के गाने निकाल के हाइप क्रिएट करने की जरूरत होती है और ना ही किसी म्यूजिक रियलिटी शो पे आंसू बहा के फुटेज खाने की।

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ja bana. Burka, burka. Na vijet bala burka.
1: Milci burka.
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बना दिए यार। सारे दिमाग
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ? मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो। कपड़े
2: गायब नहीं।
3: मैं कल को
2: फोटो खींचे।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
3: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
3: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया। मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। आई एम डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फिल्म यार। नाम है इसका द विवान। तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं इसमें, एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 25th ऑफ सितंबर। बाकी फिल्म से ना एक रोमांटिक ट्रैक समझो ना ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था, और अब इसका एक डिवोशनल और फोकलोर एलिमेंट को फोकस करने वाला गाना आया है जो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है बींग अ बिहारी, क्योंकि ये गाना छठी मैया के लिए है, जिसको लिखा है कौशल किशोर ने, विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है। एंड द हाईलाइट ऑफ द मूवी इज दैट इसे लिखा है टीवीएफ फेम अर्णब कुमार ने, दीपक मिश्रा इज द डायरेक्टर और एकता कपूर इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर देखा या नहीं भाई? बहुत सारे मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं इसको लेकर। कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार क्यों खींच रहे हैं इस तरीके से कहानी को, बट मी आई लव्ड इट। मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है एंड काफी इंटेंस भी लग रही है, विद चेरी ऑन द केक बीइंग जयदीप अहलावत, जो अपने प्रेजेंस से इसको और भी ज्यादा इंट्रीगिंग बना रहे हैं। अनिल कपूर 19 सितंबर से आने वाले गेम रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं, और इसका नाम है इंडिया के टॉप 1%। सो ये गेम शो ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है ऑफ हिट इंटरनेशनल ब्रिटिश फॉर्मेट द 1% क्लब, जिसमें ट्रेडिशनल ट्रिविया या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं होते। दिस शो फोकसेस ऑन लॉजिक, कॉमन सेंस, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग एंड मेंटल एजिलिटी अंडर प्रेशर रादर दैन टेक्स्ट बुक फैक्ट्स। वैसे इसकी अनाउंसमेंट के लिए एक कवाली फॉर्मेट में वीडियो डाली है अनिल कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, एंड कसम से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी शो को लेकर अपना ओपिनियन तो 19 सितंबर के बाद ही दूंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ, किसी के दिल और जज्बात से नहीं, मैं तो अपनी मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार, जिसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है हरप्रीत कौर जी, तैयार है मैम?
2: हाँ जी बिल्कुल।
0: ओके जी, तीन फ्लाइट अटेंडेंट्स किस फिल्म में स्मगलिंग का हिस्सा बनती हैं?
2: वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शिट यार। कृति सेनन और करीना कपूर। क्रू।
0: यस इट इज। क्रू में जूनियर फ्लाइट अटेंडेंट कौन होती हैं?
2: कृति सेनन।
0: कृति सेनन रोबोट किस फिल्म में बनी है?
2: तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।
0: क्या बात। सो तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में रोबोटिक्स इंजीनियर कौन है?
2: शाहिद कपूर।
0: उस्तरा से किस फिल्म में अपने दुश्मनों को मारते हैं?
2: ओ रोमियो
0: में उस्तरा को किससे प्यार हो जाता है?
2: तृप्ति डिमरी।
0: यस इट इज। तृप्ति डिमरी के किस फिल्म में कैरेक्टर्स के नाम रेखा, जया और सुषमा है?
2: माँ बहन।
0: बहुत बढ़िया। माँ बहन में जया और सुषमा की माँ कौन है?
2: माधुरी दीक्षित।
0: को किस फिल्म में उनकी दीदी का देवर दीवाना होता है?
2: हम आपके हैं कौन
0: में दूल्हे की साली से फ्लर्ट कौन करता है?
2: वो सलमान खान
0: किस फिल्म में प्यार में पागल हो जाते हैं?
2: वो तो हरी मूवी में होते हैं, रियल में भी हो जाते हैं वो तो।
0: नहीं, मूवी में लेजिट उनको पागल खाने भेजना पड़ता है।
2: अच्छा, तेरे नाम
0: में किससे प्यार होता है उनको?
2: निर्जरा।
0: नहीं, उनका नाम क्या असली?
2: अरे यार
0: आपको बताओ, कैरेक्टर का नाम पता है?
2: हाँ, मुझे निर्जरा पता है, उसका मीनिंग भी मुझे पता है। वो कहती है कि निर्जरा का मतलब पता है, जो कभी मर नहीं सकते, लास्ट में मर ही जाते।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बाद देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखाओ और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: Only on Mirchi, it's hot.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब मिर्ची खा।
4: Radio Mirchi, it's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ यार, अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए ना आपको कि मैं मिर्ची फिल्म ची गेम खेलने की बात कर रही होती हूँ। आपके दिमाग के घोड़े किधर किधर दौड़े उनको लगाम लगाइए। सो बेसिकली आज मैंने इस गेम की शुरुआत कर दी थी, बट माई फर्स्ट कंटेस्टेंट गॉट स्टक एट अ पॉइंट। अब उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं अनिमेश गोयल जी। तैयार हैं सर? मैंने इस गेम की शुरुआत की थी हरप्रीत जी से, बट वो अटकी इस सवाल पे। सवाल है, भूमिका चावला की किस फिल्म में पेटीकोट बाबा और कौवा बिरयानी का मेंशन है?
2: रन।
0: रन में भूमिका के साथ कौन घर से रन करता है?
2: अभिषेक बच्चन जी।
0: यस इट इज। अभिषेक बच्चन एक बिजनेस टाइकून किस फिल्म में बने हैं?
2: गुरु।
0: गुरु में मेघा को बरसों बरसों कौन बोलता है?
2: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय चोर किस फिल्म में बनी है?
2: धूम टू।
0: यस, धूम टू में शेफ चोर कौन है?
2: ऋतिक रोशन।
0: वाह, सब याद है आपको। ऋतिक रोशन बहती नदी से मछली किस फिल्म से निकाल के दिखाते हैं?
2: कृष।
0: कृष किसको प्यार की एक कहानी सुनाता है?
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: क्या बात है सर, आपने तो ये गेम एकदम ऐसे चुटकी बजाते ही खत्म कर दिया है।
2: ओके, तो क्या मैं फिल्मची बना या नहीं बना?
0: बिल्कुल।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: कंग्रेचुलेशंस सर।
2: Thank you.
0: Have a great day. Bye bye.
2: Love your show. It's a great passion for commute and always keeps me engaged. How so? Very nice to listen to you while I'm on the road.
0: Thank you so much. It means a lot, sir. Thank you.
2: Thank you. Bye.
0: Bye. My heart is full right now. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और ये फिल्मची गेम रोज मेरे शो पे आता है। अगर हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति के डीएम्स में अपना नंबर भेजना मत भूलिएगा। Till then, stay tuned. It's hot. Okay.

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vizva la murga.
1: Milci, murga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की। सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया।
1: उसमें
2: ग्रीस
1: तुम्हारा
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकुरुकू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

0: हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां औरतों को गुस्सा आना मतलब कुछ अटपटा हो जाना।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इनफैक्ट बाबू मोशाय, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन इस चीज को प्रूव किया है। मतलब अगर मेल लीड्स की बात करें, उनको अगर गुस्से वाला कैरेक्टर मिलता है तो इट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, उसको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर औरतों की बात करें तो उनके गुस्से को ना एक अलग तरीके से देखा जाता है कि भाई उनका ये जो गुस्सा है वो मेजर्ड होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए और एक लार्जर कॉज के लिए हो तो समझ में भी आता है। ऐसे छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा कैसे हो सकती है कोई महिला। बट कुछ फिल्में हैं और कुछ कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने इस चीज को सरपास किया है, और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं वैसे ही कैरेक्टर्स डिस्कस कर रही हूं, एक्टर्स बेसिकली। सो सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट शिफाली शाह मैम। अब नंबर दो पे हम तबू की बात करना चाहते हैं। सो उनका किरदार माचिस में हो, जो ग्रीफ को, पेन को तब तक एम्ब्रेस करती है जब तक वो एक फोर्स में तब्दील ना हो जाए, या फॉर दैट मैटर उनका कैरेक्टर हैदर या अंधाधुन में हो, जो एक डीपली कॉम्प्लेक्स मॉरली एम्बिग्यूस कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है जिसके साथ ऑडियंस भी एम्पथाइज करने में 10 बार सोचें। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट विद्या बालन एज एन एक्टर और उनके कैरेक्टर्स। अब वो फिल्म कहानी की बात हो जहां उन्होंने प्रेगनेंसी के स्टीरियोटाइप्स को वेपनाइज किया है, वल्नरेबिलिटी को डिस्गाइज किया है, या फिर शकुंतला देवी का उनका किरदार हो जो अपने जीनियस और अपने एम्बिशंस को यूं ही साइडलाइन नहीं करती। तो बाबू मोशाय, मेरी इस लिस्ट में और दो ऐसी ही महिलाओं की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अगर समाज के हिसाब से रीजन सही ना हो तो औरतों का गुस्सा जायज नहीं होता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशा, इस चीज को तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी टाइम एंड अगेन प्रूव किया ही है, क्योंकि बहुत सारे मेल एक्टर्स ऐसे गुस्से वाले हमें मिले हैं जिनको लोगों ने वेलकम किया है, उनको अप्रिशिएट किया, उनके टैलेंट को भी सराहा है। लेकिन अगर एंग्री यंग वुमेन ऑफ बॉलीवुड की बात करें तो थोड़ा मामला डगमगा जाता है। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं ऐसी ही महिलाओं को सेलिब्रेट कर रही हूँ। सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट शिपाली शाह मैम, नंबर दो पे हमने तब्बू को डिस्कस किया, नंबर तीन पे विद्या बालन, अब नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट आलिया भट्ट। अब डार्लिंग्स मूवी में उनका किरदार हो जो पहले विक्टिम होती है और फिर इतना ज्यादा गुस्सा उसके अंदर होता है दैट शी टर्न्स द टेबल और अपना बदला लेती है, या फिर उनका जिगरा वाला कैरेक्टर हो जो जस्टिस के लिए अपने फिजिकल लिमिटेशंस को भी साइडलाइन करके आगे बढ़ती है। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट स्वरा भास्कर एज एन एक्टर। अब नील भट्ट सन्नाटा में इनका किरदार हो जो अपनी किस्मत से रेजिस्ट करते हुए अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी बदलने का सोचती है, या फिर उनका किरदार लिसन माया में हो जो डिसाइसिवली एक्ट करती है, इनफैक्ट अपने बॉस को थप्पड़ भी मारती है टू प्रोटेक्ट हर बाउंड्रीज। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर ऐसी ही कुछ एंग्री यंग वुमेन आप भी डिस्कस करना चाहो, एड इन करना चाहो, देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। मीनवाइल, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. I'm definitely looking forward to this film, यार. नाम है इसका The Vivaan. तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं इसमें, and the movie is set to release on the 25th of September. बाकी फिल्म से ना एक रोमांटिक ट्रैक समझो ना ऑलरेडी रिलीज कर दिया गया था, और अब इसका एक डिवोशनल और फोकलोर एलिमेंट को फोकस करने वाला गाना आया है जो मेरे लिए काफी ज्यादा स्पेशल है बींग अ बिहारी, क्योंकि ये गाना छठी मैया के लिए है, जिसको लिखा है कौशल किशोर ने, विशाल मिश्रा ने अपनी आवाज दी है. एंड द हाईलाइट ऑफ द मूवी इज दैट इसे लिखा है टीवीएफ फेम अरुणाभ कुमार ने, दीपक मिश्रा इज द डायरेक्टर और एकता कपूर इज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स. दृश्यम द कंक्लूजन का ट्रेलर देखा या नहीं भाई, बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं इसको लेकर. कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार क्यों खींच रहे हैं इस तरीके से कहानी को, बट मी आई लव्ड इट. मूवी 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है एंड काफी इंटेंस भी लग रही है, विद चेरी ऑन द केक बीइंग जयदीप अहलावत, जो अपने प्रेजेंस से इसको और भी ज्यादा इंट्रीगिंग बना रहे हैं. अनिल कपूर 19 सितंबर से आने वाले गेम रियलिटी शो को होस्ट करने वाले हैं, और इसका नाम है इंडिया के टॉप 1%. सो ये गेम शो ऑफिशियल इंडियन अडेप्टेशन है ऑफ हिट इंटरनेशनल ब्रिटिश फॉर्मेट द 1% क्लब, जिसमें ट्रेडिशनल ट्रिविया या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं होते.

This show focuses on logic, common sense, observation, reasoning and mental agility under pressure rather than textbook facts. वैसे इसकी अनाउंसमेंट के लिए एक कवाली फॉर्मेट में वीडियो डाली है अनिल कपूर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, एंड कसम से मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। बाकी शो को लेकर अपना ओपिनियन तो 19 सितंबर के बाद ही दूंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

दोस्तों, फ्राइडे की शाम में ना कुछ अलग ही जादू होता है। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ पूरा हफ्ता हम सब अपनी अपनी लाइफ के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बने होते हैं, मीटिंग्स, ईमेल्स, ट्रैफिक, डेडलाइंस, न जाने क्या क्या चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं, फिर आता है फ्राइडे और वो बोलते हैं कि यार अब तो हीरो बन जाओ, क्योंकि फ्राइडे इवनिंग का मूड ना बिल्कुल बॉलीवुड ओपनिंग सीन जैसा होता है। लाइट्स थोड़ी ब्राइटर लगती है, म्यूजिक थोड़ा बेटर लगता है और प्लान्स चाहे बड़े हो या ना हो, एक्साइटमेंट फ्री में मिल ही जाती है। यार कोई मूवी नाइट प्लान कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ डिनर जा रहा है और कुछ लोग बस घर पहुंच के एसी और काउच के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं। लेकिन यार सच्ची बताऊं ना तो बॉलीवुड में ना हमें यही सिखाया गया है कि जिंदगी परफेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए, बैकग्राउंड में अच्छा म्यूजिक चलाओ और सीन एंजॉय करो। तो चलिए आज की शाम शानदार में भी हम वही करेंगे, थोड़ी मस्ती, थोड़ा म्यूजिक और थोड़ा बॉलीवुड मैजिक। तो आप भी बताओ दोस्तों, अगर आपकी फ्राइडे नाइट एक बॉलीवुड मूवी होती तो उसका जॉनर क्या होता? कॉमेडी, रोमांस, एक्शन या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और इस फ्राइडे शाम को शानदार बनाने के लिए ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो। बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लेंस कैसे लगाया नहीं?
1: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब?
0: नहीं,
1: मैं कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे कपड़े
1: कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है, बहुत अच्छे फोटो है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहु उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्तों हम सब ना अपनी कार में दो अलग पर्सनालिटीज लेके चलते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो हम बिल्कुल डिसेंट से सीधे साधे इंसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा फेवरेट बॉलीवुड गाना बजता है, स्टेयरिंग व्हील माइक बन जाता है, विंडशील्ड ऑडियंस और पूरी कार एक पर्सनल कॉन्सर्ट स्टेज। यार किसी को लिरिक्स परफेक्ट आते हो या नहीं आते हो, कोई सिर्फ लाला ला पे काम चला लेता है, और कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो इतना सॉलिड होता है कि एकदम कॉन्फिडेंस से गलत गाना देते हैं कि ओरिजिनल सिंगर भी सोचने लगता है कि भाई क्या गा रहे हो। तो चलिए आज एक काम करते हैं, जो अगला गाना है जो मैं बजाने वाली हूँ आपके लिए, उसे सिर्फ सुनना मत, जहां भी हो, कार में, किचन में, ऑफिस से घर जाते हुए, चैलेंज ये है कि उसके साथ आपको जोर से ये गाना गाना है। क्योंकि बॉलीवुड के गाने सिर्फ सुनने के लिए थोड़ी ना बने यार, वो तो साथ गाने के लिए भी बने हैं, अपना भी तो टच होना चाहिए। और हाँ, बाद में डीएम करके जरूर बताना कि आज के गाने में लिरिक्स याद भी थे फुल कॉन्फिडेंस पे गलत गा रहे थे। टेल मी ऑनेस्ट एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। तो चलिए फ्राइडे कार म्यूजिक शुरू करते हैं, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ कॉन्सर्ट्स का काउंटडाउन कैलेंडर से नहीं गानों से होता है और आज मिर्ची पर वो काउंटडाउन फुल वॉल्यूम में होने वाला है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और सबसे पहले आप सबको बहुत सारा शुक्रिया एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड इन द सोनू निगम कॉन्टेस्ट। आपके आंसर्स, आपके फेवरेट सॉन्ग्स और इतना सारा एक्साइटमेंट देखकर एक बात तो क्लियर है, न्यू जर्सी इज एब्सोल्युटली रेडी फॉर सोनू निगम। और इसी एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए अब मिर्ची पर सुनेंगे सोनू निगम के बैक टू बैक गाने, क्योंकि कल यानी शुक्रवार सितंबर 11 को सोनू निगम लेकर आ रहे हैं रिवॉल्यूशन टूर एट हार्ड रॉक लाइव ईटस एरिना अटलांटिक सिटी में, प्रेजेंटेड बाय अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी। तो अगर टिकट्स अभी तक नहीं लिए तो चेकआउट ticketmaster.com, saiusainc.com या फिर sulekha.com, क्योंकि बहुत ही कम टिकट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाइए। और अब बातें कम, म्यूजिक ज्यादा, सोनू निगम बैक टू बैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो ई का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमारे कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: Maika.
1: Sham Shanda. Let's go on donkey, have a funky time.
2: दोस्तों कितनी खूबसूरत बात है ना कि इस एक लम्हे ने हम सबको जोड़ दिया है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी वक्त न्यू जर्सी में कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही होंगी। किसी के ऑफिस से घर की ड्राइव है, कोई ग्रोसरी लेने जा रहा होगा, कोई बच्चे को पिकअप करके आ रहा है और शायद किसी की रोड ट्रिप ऑलरेडी शुरू भी हो चुकी है। सबकी डेस्टिनेशन अलग है लेकिन कुछ देर के लिए ना हम सब एक ही गाना, एक ही कहानी और एक ही फ्रीक्वेंसी शेयर कर रहे हैं और शायद इसीलिए रेडियो मुझे सबसे ज़्यादा खास लगता है, क्योंकि ये सिर्फ गाने नहीं बजाता, ये अलग अलग सफ़रों को कुछ मिनटों के लिए ना एक साथ ले आता है। तो अगर आज मिर्ची आपके सफ़र का हिस्सा बनी है तो मुझे ज़रूर बताना कि इस वक्त न्यू जर्सी के किस कोने से सुन रहे हो। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि इस पल में हम सब जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस खूबसूरत पल को सेलिब्रेट करते हैं विद दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेस वन से फेस टू गई थी।

0: आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका वो रास्ते में फून भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज सुने हैं हम और बहुत अच्छा लगा है आवाज सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
0: नहीं वो मैडम, हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है
0: मैडम? आई लव यू। हम आपको देख के इतना
2: मेरी बात है। चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू। मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ चारू, प्लीज बुरा मत मान यार थोड़ा सा। नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

शुक्र है, शुक्रवार आ चुका है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फ्राइडे ना दोस्तों सिर्फ वीक का एंड नहीं होता है, कभी कभी नए आइडियाज की बिगिनिंग भी होती है। क्योंकि जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, तभी हम वो सवाल पूछ पाते हैं जो बिजी वीकेंड्स में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कि क्या मैं सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहा हूँ, या क्या होम बाइंग का ये सही वक्त है, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग मॉर्गेज के बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर ये सवाल आपके भी माइंड में है तो आज का सेगमेंट बिल्कुल आपके लिए है। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक तरफ वीकेंड खत्म भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ ओटीटी ने वॉच लिस्ट और भी लंबी कर दी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इस हफ्ते स्ट्रीमिंग पर काफी मिक्स प्लेटर आ रहा है। द रिवॉल्यूशनरी हिस्टोरिकल ड्रामा लेकर आ रहा है, घमासान क्राइम ड्रामा जोन में है और चंबक थोड़ा लाइटर फैमिली कॉमेडी स्पेस में है। मतलब एक ही घर में तीन लोग रिमोट पकड़ के तीन अलग मूड्स में का डिमांड कर सकते हैं। और यार मुझे तो ओटीटी का ये पार्ट सबसे ज्यादा फनी लगता है कि डिसीजन ना कॉन्टेंट का कम नेगोसिएशन का ज्यादा होता है कि यार आज कुछ सीरियस देखना चाहिए कि नहीं नहीं यार आज थोड़ा लाइट देखना चाहिए। अरे यार 40 मिनट्स का ही एपिसोड है, मतलब ये कॉन्वर्जेशन हमारे डेली लाइफ के पार्ट बन चुके हैं और 20 मिनट सिर्फ चूज करने में ही निकल जाते हैं। तो आज का सवाल बहुत सिंपल है, आपकी वॉचलिस्ट मूड से डिसाइड होती है या कास्ट देखकर? मतलब डीएम करना आरजे मिर्ची सिद्धि को SIDDHI। वैसे ये रिमोट सबसे ज्यादा किसके हाथ में रहता है? और जब तक ओटीटी डिसाइड होता है प्लेलिस्ट का डिसीजन तो हम ले चुके हैं, क्योंकि अगला बॉलीवुड गाना राइट हियर फॉर यू ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमारे रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज। Only on Mirchi, it's hot.

एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलामे इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलामे इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलामे इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब ज़माना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलाम ए इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम है इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनु लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनु मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनू लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं, लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपने रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi, SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनू लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Escava la buscava nossa cabana. Cabana. Burga, burga. Na viva la burga. Mirci, burga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी,
1: कौन?
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली। थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई?
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक है क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश

0: सर एक्चुअली
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
0: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
0: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी। सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
0: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
0: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल तो नहीं है तू?
0: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप? गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूँ, नई गाड़ी थी हमारी।
0: नहीं सर आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारा भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया।
1: उसमें
0: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगा। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में।
0: अच्छा सर
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
0: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की।
0: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
2: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
2: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए।
1: कुकड़ू-कू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामे इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशंस इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबू जी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलामे इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलामे इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, इवन ऑफ पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक ना अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी ये गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलामे इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH, क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछाकर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार है वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौज है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खून रेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है, एंड मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर तो मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है, कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ई भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक ऑल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखाओ, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो हैं, ई का भौकाल मचाया मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां, भूलना मत हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते हैं ना भैया, अमा पनवा चटाई के जब धमाल करे, कभी कभार तो ऐसे लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। वो फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3:30 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है
0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? ये हमें हर इमोशन के लिए गाना दे ही देता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बारिश हो तो अलग प्लेलिस्ट, लॉन्ग ड्राइव हो तो अलग, हार्ट ब्रेक के लिए अलग और सेलिब्रेशन के लिए अलग। और मज़े की बात तो ये है कि कभी कभी हम फीलिंग्स बाद में समझते हैं और बॉलीवुड पहले ही उसके लिए गाना बना चुका होता है। और इसीलिए कुछ सॉन्ग्स ना सिर्फ हिट नहीं होते, वो हमारी लाइफ के माइलस्टोन्स बन जाते हैं। चाहे फिर स्कूल फेयरवेल हो, पहली सैलरी हो, पहला प्यार हो या फिर फैमिली रोड ट्रिप, हर मेमोरी के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं एक बॉलीवुड सॉन्ग ज़रूर बज रहा होता है। तो दोस्तों, आज का सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपकी लाइफ पर फिल्म बने तो उसका टाइटल ट्रैक कौन सा बॉलीवुड गाना होगा? DM ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए देखते हैं कि आज का अगला गाना किसकी कहानी का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने वाला है। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हंगामा आ रहा है ट्रेन की छत से। जी हाँ, छैया छैया यार, ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा। इसमें SRK है, मलाइका है और हवाएं हैं, स्वैग है, तो लगता है कि बस डांस करो और हिट हो जाओ। पर यार पर्दे के पीछे का सीन ना लिटरली बैलेंस का एग्जाम था। मलाइका जी ने बताया था कि ट्रेन के ऊपर हवा इतनी ज़्यादा तेज थी कि कभी वो दाएं कभी बाएं तरफ स्वे कर रही थी, तो टीम ने ना उन्हें रोप से ट्रेन के साथ टाई कर दिया था ताकि सिंक भी रहे और सेफ्टी भी। और जब वो रोप निकाला गया, वेस्ट पे ना उनके काफी सारे कट्स आ गए थे और सेट पे सब परेशान हो गए थे, सारे पैनिक मोड में आ गए थे कि यार मलाइका जी ठीक तो है ना। मतलब सोचिए, ट्रेन के ऊपर छैया छैया करना इतना आसान भी नहीं था। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना हिट सॉन्ग कभी कभी पहले सर्वाइवल सॉन्ग बन जाता है और बाद में हिट बन जाता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे के सॉलिड बॉलीवुड किससे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो बहुत अच्छा है? सतीश चंद का एक बटन था, उसकी शादी के फोटो बना दिया यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लगाया नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े गायब
0: नहीं।
1: मैं कल को अरे लेंस ऐसे
0: पूरे कपड़े
1: कौन से, मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
0: अरे
1: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आए हैं सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी। हेलो, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
1: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर। आप मुर्गा बन रहे हैं आप रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज हंगामा आ रहा है ग्रैंड हैवी इमोशन सॉन्ग के पीछे से। जी हां, हम सबका फेवरेट डोला रे डोला। यार जब आप डोला रे डोला देखते हो तो लगता है कि बस ग्रेस, रिदम और शान ही शान है, क्योंकि माधुरी और ऐश्वर्या का डांस और प्योर पोइट्री है। पर पर्दे के पीछे एक सीन फुल पावर कंजप्शन मोड में था। जी हाँ, ये गाना इतने बड़े सेट पर शूट हुआ था, इतनी ज़्यादा लाइटिंग और इतने जनरेटर्स के साथ कि पूरी यूनिट मोस्टली रात को ही काम करती थी। और लाइट्स इतनी हैवी थी कि मुंबई के इवेंट वालों को जनरेटर्स मिलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि देवदास के सेट ने ऑलमोस्ट सब कुछ बुक कर लिया था। मतलब देवदास का जो दर्द था ना, वो स्क्रीन पे तो चल ही रहा था, और जो भी शादी वाले लोग हैं उनका दर्द रियल ग्राउंड में दिख रहा था, क्योंकि जनरेटर्स ही नहीं मिल रहे थे। तो समझे दोस्तों, बॉलीवुड में ना जब इमोशंस बड़े होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ब्लॉकबस्टर लेवल का होता है। ऐसे ही पर्दे के पीछे की फिल्म ही हंगामे चाहिए तो जरूर बताना। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते ये अगला हॉट सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
2: अज बोतला

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं, उसके पीछे महीनों की जिम और ट्रेनिंग छुपी होती है। तो इसका मतलब तो साफ है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सिर्फ डांस ही नहीं, फुल एथलीट बनना पड़ता है। और शायद इसीलिए कहते हैं बॉलीवुड का डांस नहीं है आसान। तो चलिए सुनते हैं धूम 3 का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: ओ यार मिर्जापुर आ गई। यानी 2018 में जिन लोगों ने इस सीरियल बात देखल बे ना, इन लोगों को तो बिंदास्त में एक बार थिएटर में जाकर अपने अपनी कालीन अब चद्दर बिछा कर कालीन भैया के एंटरटेनमेंट देखना बनता है। सारे जो कलाकार वो धमाल करते हैं। इनफैक्ट जीतूराज तो कहेगा कि जितने लोगों को मिर्जापुर पसंद आई थी उन लोगों को तो 100% पसंद आएगी, पर जिन लोगों ने मिर्जापुर ये सीरीज नहीं देखी उन लोगों को भी एक बार बिंदास देख लेनी चाहिए। बहुत धमाल है, बहुत सारी गाली गलौच है, बहुत सारी गुंडागर्दी है, बहुत सारा खूनरेजी है, बट दैट इज व्हाट मिर्जापुर इज ऑल अबाउट। बट जीतूराज को स्त्रियों का महत्व बड़ा पसंद आता है। मिर्जापुर सीरीज में जो स्त्रियों को महत्व दिया था वो इस पहले हिस्से में, शायद ऐसे लगता है कि दूसरा हिस्सा भी आएगा मिर्जापुर द मूवी का, इस पहले हिस्से में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया है। कोई कारण होगा पता नहीं है, बट बिंदास देखी जा सकती है। ये भौकाल एक बार एंटरटेनमेंट के लिए अपनी फैमिली के साथ देखना चाहिए या नहीं, एक कॉल त्योहार है। हम तोहका ना ही बोला है कि जाके थिएटर में अपनी फैमिली के साथ देखो, बट इंडिविजुअली अपने फ्रेंड्सवा के साथ बिंदास तंगड़ियां पसार के कुर्सियों पर बैठकर देख लो। हैं ये का भौकाल मचाए मिर्जापुर द मूवी ने। एंड हां भूलना मत, हमार रवि किशन भैया जब जब स्क्रीन पर आते ना भैया, अमा पनवा चटाई के जव धमाल करे। कभी कभार तो ऐसे लगाए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, रवि किशन बाबू कि हमार कालीन भैया पंकज त्रिपाठी। फुल एंटरटेनमेंट है यार। 3.5 मिर्ची है टीम मिर्ची की तरफ से, देखा और अपनी कितनी मिर्चियां हैं वो हमका बताओ इंस्टाग्राम पर आए @मिर्ची जीतूराज। समझे कि नहीं समझे, सही है।
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो

मिर्ची हेलो पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची। वीकेंड आ गया और वीकेंड का मतलब प्लान्स। अब किसी के प्लान्स में गोवा है, किसी के प्लान्स में नाइट क्लब, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ वीकेंड पे क्लब मिर्ची सुनते हैं विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। क्योंकि वीकेंड के लिए भाई क्राउड जरूरी नहीं, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ी मूड और जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर अ फ्यू आवर्स बस। So let's start this episode with our favorite Ek Din Teri Raho Mein. Let's go!